0: युवराज में नहीं, तब तो जीत गए, इस बार आपने हरा दिया। क्या किया आपने इस बार जो पिछली बार नहीं हो पाया?
1: आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज नॉट टेस्टेड, बट इन लास्ट वन ईयर पीपल ऑफ जोरहट कुड सी हिम फ्रॉम अ वेरी क्लोज क्वार्टर एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज ओन सीट, ही लॉस्ट 9 out of 10 in the entire Lok Sabha constituencies. Today, in his constituency, there is only one MLA, that too from an alliance party. Congress has now no MLA from the entire Jorhat Lok Sabha constituency. So it was not a defeat, it was a complete defeat in that sense of term.
0: अच्छा हिमंतदा, इस वक्त आप NDTV के सारे चैनलों पे लाइव हो, आप इंडिया पे भी लाइव हो, इसलिए मैं आपसे हिंदी में सवाल कर रहा हूँ और मेरा अनुरोध है कि आप हिंदी में जवाब दें ताकि हम सब जगह आपको अच्छे से दर्शकों को दिखा भी पाएं। पहले जिस तरह की डोमिनेंस आपकी आसाम में हो गई है, वैसे बहुत ही कम प्रेसिडेंट्स हैं बीजेपी में और इस वक्त की राजनीति में जो कि अपने राज्य को और अपने पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करता है। जब आप अपने प्रोग्रेशन को देखते हैं, आपके हिसाब से असम की जनता ने इस मैंडेट के जरिए हिमंत बिस्वा सरमा के राजनीतिक भविष्य के बारे में क्या मैसेज दिया है?
1: मेरा नहीं लगता है कि आपको असम का रिजल्ट कोई व्यक्ति का भविष्य का साथ जोड़ना चाहिए। असम इज ए वेरी स्पेशल केस। राहुल, मैं आपको भी जब भी मिलता हूँ हमेशा समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। असम का लोग एक बहुत बड़ा समस्या में है। हम लोग अपना आइडेंटिटी को लेके, हमारा भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित रहता हूँ, बिकॉज वी आर नाउ लूजिंग द डेमोग्राफिक बैटल बहुत फास्ट। टुडे असम विल हैव 40% मुस्लिम पॉपुलेशन इन दिस सेंसस, रफली अराउंड 40%। 12 से 13 जिला में हम लोग वी हैव बिकम कम्प्लीट माइनॉरिटी। सो हर चुनाव असम का लोग अपना अस्तित्व का साथ जोड़ते हैं और हमारे आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग वोट डालते हैं। सो चुनाव जीतने और हारने, ये दोनों का साथ एक बहुत बड़ा बातें छुपा होते हैं कि क्या असम फाइनली इट विल बिकम ए मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। तो हमारे शंका, हमारे चिंता देश का प्रदेशों से काफ़ी अलग है। सो दिस इज़ नॉट ए विक्टोरी, प्रोबेबली ये हमारे जो जूथ चलता है असम का अंदर, इसका और एक चैप्टर है।
0: ये बताएं हिमंतदा कि हैट्रिक होने के बाद इस बार के आपके टर्म में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज क्या हैं? क्योंकि पिछले टर्म में भी हमने देखा कि जिस तरीके से GSDP जो स्टेट की ग्रोथ की विकास दर है वो ज़्यादा थी। आसाम और तेजी से बढ़े, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड हो, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, क्या लोग आपसे एक्सपेक्ट करें?
1: देखिए, असम एक भारत के उभरते हुए इकोनॉमी है, एक शाइनिंग स्पॉट है और असम में बहुत तरक्की हो रहा है, बट इसकी स्पीड को एस्केलेट करना है। सरकार होने दीजिए, विल कम आउट विथ ए वेरी पॉजिटिव एजेंडा और मुझे लगता है और 5 साल असम में यही पेस में काम होगा तो द आइडेंटिटी ऑफ असम विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट।
2: Now let's talk about the newly elected Suvindu Adhikari Sarkar that has allotted these portfolios to 5 ministers as the West Bengal government takes shape. We have Dilip Ghosh, who received the state's rural development as well as panchayats and animal resources department. And then we have Agni Mitra Paul, who is set to head women and child welfare. Ashok Kirtania has been given the state's food department, while we have Khudiram Tudu, who has received backward class welfare department. And then we also have Pramanik, who will be heading the North Bengal development as well as sports and youth welfare department. The ministers have thanked the West Bengal Chief Minister Suvindu Adhikari after they took charge and said this is their opportunity to serve the people of the state of West Bengal. And now we have Prime Minister Modi, who's issued a second call for austerity amid global tensions impacting crude supply. In Gujarat, the Prime Minister said, amid a global crisis, it's the local duty of the citizens to save foreign spending, holding back on gold purchases and visits abroad. The Prime Minister also called for economic discipline and saying that if COVID was the biggest crisis of the century, then this is the biggest crisis of the decade. Government sources have told NDTV that India has 60 days of crude oil supply and about 45 days of LPG rolling stock. Meanwhile, the opposition leaders have hit out at the Prime Minister, saying his appeal is an admission of failure in the management by the centre, demanding a call to know the real and true picture.
3: सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है।
2: The Prime Minister urging Indians to buy Indian goods which are made in India, not to go abroad and travel locally, and also to carpool and use public transport as much as possible. With that, sitting in a short break, back with a whole lot more. Stay with us.
4: Sheila Rekwar from Chitrakoot runs a canteen. People relish the food she prepares. She started this canteen by taking a loan under the Mukhya Mantri Yuva Swarozgar Yojana.
5: बहुत मदद मिल रही है और ये योजना बहुत अच्छी है। मैं तो कहती हूँ जितनी हमारी बहनें घरों में बैठी हैं, वो भी अपनी ये इस योजना का लाभ उठाएं और घर से बाहर निकले और अपना ये सब काम देखें।
4: The Yogi Adityanath government provides with loan of up to 25 lakh rupees at affordable rates, along with a subsidy of up to 25% to eligible young men and women aspiring to become self-employed.
6: और मुझे लगता है आज के दिन पे काम की कमी नहीं, थोड़ा हौसला चाहिए। हौसला है तो युवा अपने उड़ान का रास्ता स्वयं तय कर लेगा, सरकार उसका संबल बनने को तैयार हो।
4: Under the leadership of Chief Minister Yogi Adityanath, the government of Uttar Pradesh is fully committed

0: austerity amid global tensions impacting crude supply. In Gujarat, the Prime Minister said amid a global crisis, it's the local duty of the citizens to save foreign spending, holding back on gold purchases and visits abroad. The Prime Minister also called for economic discipline and saying that if COVID was the biggest crisis of the century, then this is the biggest crisis of the decade. Government sources have told NDTV that India has 60 days of crude oil supply and about 45 days of LPG rolling stock. Meanwhile, the opposition leaders have hit out at the Prime Minister, saying his appeal is an admission of failure in the management by the centre, demanding a call to know the real and true picture.
1: सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है।
0: The Prime Minister urging Indians to buy Indian goods which are made in India, not to go abroad and, travel locally and also to carpool and use public transport as much as possible. With that, sipping a short break, back with a whole lot more. Stay with us.

0: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
1: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, महाराष्ट्र का रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.

0: Deputy chief ministers from across the country are expected to attend, turning the event into a major national level NDA gathering. Even before the grand swearing-in ceremony, the suspense continues over the final shape as far as the cabinet is concerned. There's Sarma there indicating that around 18 to 19 ministers are likely to be inducted into the new government. Speaking to the media ahead of the ceremony, Sarma said that there's no final decision that's been taken on the names, adding that the cabinet list would be finalized only after there have been discussions with JP Nadda and Nitin Naveen. And the BJP leadership is weighing a balance between experienced faces and fresh entrants as the NDA 3.0 is taking shape in the state. Sarma said that the people of Assam have given the NDA a clear mandate and assured that the new government would continue to work steadily for the welfare and the development of the state over the next 5 years. The BJP-led alliance returned to power with a massive mandate, making this NDA's third consecutive term in the state.
1: हमारे नया जो मिनिस्ट्री है शपथ लेने जा रहा है और ये समारोह में भारत की सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी भाग लेगा साथों साथ भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी रक्षा मंत्री राजनाथ जी और तमाम एनडीए शासित प्रदेशों का मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री हमारे एनडीए का जो घटक दल है उनके अध्यक्ष लोग तो बहुत सारे लोग आएगा इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए कुछ लोग आएगा
2: बंगाल की जीत हम लोग के लिए बहुत मायने रखती है और असम में जिस तरीके से इतने बड़े जनादेश के साथ एक बार फिर से हमारी सरकार एनडीए की सरकार बनी है इसका श्रेय दोनों राज्यों की जनता मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है
0: And speaking exclusively to NDTV is Hemanta Biswa Sarma. He spoke with the editor-in-chief of NDTV, Rahul Kawal. Let's listen in to what he had to say about this historic poll result.
3: Hemanta Biswa Sarma, century, wo bhi hat-trick ke saath, logon ko lag... तमिलनाडु में क्या होगा इस पे अनिश्चितता थी पश्चिम बंगाल को लेके सस्पेंस था केरल में कितनी टाइट फाइट होगी अगर लोग कन्विंस थे कि कहीं पे एक वर्डिक्ट काफी क्लियर है वो आसाम का लेकिन आपको लग रहा था कि सेंचुरी इतनी बड़ी जीत आपकी दर्ज होगी 73 से 102 पार स्वागत है और मुबारकबाद
1: फॉर अस इट वॉज एक्सपेक्टेड प्राइमरीली बिकॉज इन 2024 लोकसभा इलेक्शन We registered victory in 94 assembly seats. So we were around 100 number right from the 2024 Lok Sabha election. So we further consolidated and crossed 100 and we reached 102. So in Assam, it was not a major surprise. It was more or less expected that we will be Somewhere around 95 to 100.
3: मेरे पास 2024 के लोकसभा के भी आंकड़े हैं ये देखिए मैप उसमें 88 थी बीजेपी की खुद की और अब हो गई हैं 102 तो काफ़ी हद तक जो सैफरन स्वीप थी आसाम में वो और भी बढ़ गई है जब हैट्रिक के साथ आता है साधारण तौर पे हैट्रिक के वक्त पे एक एंटी इनकम्बेंसी सी बिल्ड हो जाती है लेकिन आपने तो एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को धो डाला कांग्रेस को धो डाला यहां तक कि गौरव गोगोई भी हार गए जोरहाट में मेरे को याद है आपसे मुलाकात हुई थी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले आपने बोला था राहुल मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूं तुम्हें मुझसे नोट करा लो इसको मैं हरा दूंगा कुछ भी हो जाए गौरव गोगोई जोरहाट में नहीं तब तो जीत गए इस बार आपने हरा दिया क्या किया आपने इस बार जो पिछली बार नहीं हो पाया
1: आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज नॉट टेस्टेड But in last 1 year, people of Jorhat could see him from a very close quarter. And important point to note that he not only lost his own seat, he lost 9 out of 10 in the entire Lok Sabha constituencies. Today, in his constituency, there is only one MLA, that too from an alliance party. Congress has now no MLA from the entire Jorhat Lok Sabha constituency. So it was not a defeat, it was a complete defeat in that sense of term.
3: अच्छा हिमंत दा इस वक्त आप NDTV के सारे चैनलों पे लाइव हो आप NDTV इंडिया पे भी लाइव हो इसलिए मैं आपसे हिंदी में सवाल कर रहा हूँ और मेरा अनुरोध है कि आप हिंदी में जवाब दें ताकि हम सब जगह आपको अच्छे से दर्शकों को दिखा भी पाएं पहले जिस तरह की डोमिनेंस आपकी आसाम में हो गई है वैसे

0: बहुत ही कम प्रेसिडेंट्स हैं बीजेपी में और इस वक्त की राजनीति में जो कि अपने राज्य को और अपने पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करता है। जब आप अपने प्रोग्रेशन को देखते हैं, आपके हिसाब से असम की जनता ने इस मैंडेट के जरिए हिमंत बिस्व शर्मा के राजनीतिक भविष्य के बारे में क्या मैसेज दिया है?
1: मेरा नहीं लगता है कि आपको असम का रिजल्ट कोई व्यक्ति का भविष्य का साथ जोड़ना चाहिए। असम इज ए वेरी स्पेशल केस। राहुल, मैं आपको भी जब भी मिलता हूँ हमेशा समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। असम का लोग एक बहुत बड़ा समस्या में है। हम लोग अपना आइडेंटिटी को लेके हमारा भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित रहता हूँ, बिकॉज वी आर नाउ लूजिंग द डेमोग्राफिक बैटल बहुत फास्ट। टुडे असम विल हैव 40% मुस्लिम पॉपुलेशन इन दिस सेंसस, रफली अराउंड 40%। 12 से 13 जिला में हम लोग वी हैव बिकम कंप्लीट माइनॉरिटी। सो हर चुनाव असम का लोग अपना अस्तित्व का साथ जोड़ते हैं और हमारे आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग वोट डालते हैं। सो चुनाव जीतने और हारने ये दोनों का साथ एक बहुत बड़ा बातें छुपा होते हैं कि क्या असम फाइनली इट विल बिकम ए मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। तो हमारे शंका हमारे चिंता देश का प्रदेशों से काफ़ी अलग है। सो दिस इज नॉट ए विक्टोरी, प्रोबेबली ये हमारे जो जूत चलता है असम का अंदर इसका और एक चैप्टर है।
0: ये बताएं हेमंतदा कि हैट्रिक होने के बाद इस बार के आपके टर्म में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज क्या हैं, क्योंकि पिछले टर्म में भी हमने देखा कि जिस तरीके से जीएसडीपी जो स्टेट की ग्रोथ की विकास दर है वो ज़्यादा थी। आसाम और तेजी से बढ़े, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड हो, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, क्या लोग आपसे एक्सपेक्ट करें?
1: देखिए, असम एक भारत के उभरते हुए इकोनॉमी है, एक शाइनिंग स्पॉट है और असम में बहुत तरक्की हो रहा है, बट इसकी स्पीड को एस्केलेट करना है। सरकार होने दीजिए, विल कम आउट विथ ए वेरी पॉजिटिव एजेंडा, और मुझे लगता है और 5 साल असम में यही पेस में काम होगा तो द आइडेंटिटी ऑफ असम विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट।
2: Now, we also do know that this is the third term for the BJP storming to that win in Assam under the leadership of Hemanta Biswa Sarma, who is taking charge as the chief minister for the second time. That swearing-in ceremony that's going to be taking place in a few hours' time from now. He's no longer just a regional satrap. He's emerging as one of BJP's biggest national power centers as well. Let's get you more details on the new chief minister, the second time round chief minister of Assam.
3: Three elections, three victories, one man at the center of BJP's Assam juggernaut. Hemanta Biswa Sarma, the architect of BJP's northeast expansion, has now delivered a hat-trick in Assam, crushing the Congress, the very party where his political journey began.
1: Hamara jeet ka sehra Pradhan Mantri Narendra Modi aur Assam BJP ka karyakarta. तमाम कार्यकर्ता वही जीत का फेज है, और जीत का श्रेय किसको जाते हैं? असम का जनता को। असम का जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिए।
3: When former Assam Chief Minister and Congress veteran Hiteshwar Saikia was trying to bring the youth to the party fold after the restive 1980s of the Assam agitation, he found his man in Hemanta Biswa Sarma. A young student activist in those days, Sarma, who had built a name for himself in campus politics by then, was associated with the influential All Assam Students Union. Since joining the Congress in 1991 and quitting it in 2015, he remained the go-getter for both Saikia and later Tarun Gogoi. Once a key Congress troubleshooter, Sarma's dramatic exit from Congress in 2015 changed Assam's political destiny. Denied space in Congress, Hemanta crossed over to the BJP and rewrote the state's power equations. From strategist to kingmaker to undisputed king, he first helped BJP end decades of Congress dominance in 2016. In 2021, he became chief minister. And now, by leading BJP to a third consecutive triumph, Sarma has cemented his legacy as Assam's most powerful political force. His politics blends aggressive Hindutva, regional nationalism, governance delivery, and sharp political messaging. From anti-encroachment drives to welfare outreach to projecting strong leadership.
4: अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो क्या क्या आपत्ति है मेरा कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा
3: This victory is special for Sarma as he has swept the state as an incumbent chief minister, a direct stamp of voter on his rule. For Congress, the defeat is especially painful because a man dismantling its base is its own former general. Sarma's rise symbolizes not just BJP's strength, but Congress's long decline in Assam. Within BJP, Sarma's stock is soaring. Prime Minister Modi and Amit Shah trusted him and he has delivered. A master strategist, mass leader and relentless campaigner. From Congress rebel to BJP conqueror, Himanta Biswa Sarma's rise is now one of modern India's defining political success stories. Bureau Report, NDTV.
2: And with that, we're slipping into a very short break. Back with a whole lot more on the other side, including Prime Minister Modi's second austerity call. That and a lot more. Stay with us.

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
3: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
3: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
4: Economy, business, world, technology. Noise filtered, numbers decoded. Insights that rewire your worldview. From governance

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
3: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
4: Across the country,
5: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
6: Launch control, 0 to 100.
7: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
8: This car makes no sense, yet it makes every sense.
9: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
7: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
10: R Pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
11: Bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
12: Illegal migrant, ये बांग्लादेश घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार.
13: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ. भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड.
14: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
15: ओडिशा का है. जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की.
16: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री.
17: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड the real politics of CPM and I left the Democratic Front.
18: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
19: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.

0: में हो गई है, वैसे बहुत ही कम प्रेसिडेंट्स हैं बीजेपी में और इस वक्त की राजनीति में जो कि अपने राज्य को और अपने पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करता है। जब आप अपने प्रोग्रेशन को देखते हैं, आपके हिसाब से असम की जनता ने इस मैंडेट के जरिए हिमंत बिस्व शर्मा के राजनीतिक भविष्य के बारे में क्या मैसेज दिया है?
1: मेरा नहीं लगता है कि आपको असम का रिजल्ट कोई व्यक्ति का भविष्य का साथ जोड़ना चाहिए। असम इज ए वेरी स्पेशल केस। राहुल, मैं आपको भी जब भी मिलता हूँ हमेशा समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। असम का लोग एक बहुत बड़ा समस्या में है। हम लोग अपना आइडेंटिटी को लेके हमारा भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित रहता हूँ, बिकॉज वी आर नाउ लूजिंग द डेमोग्राफिक बैटल बहुत फास्ट। टुडे असम विल हैव 40% मुस्लिम पॉपुलेशन इन दिस सेंसस, रफली अराउंड 40%। 12 से 13 जिला में हम लोग वी हैव बिकम कंप्लीट माइनॉरिटी। सो हर चुनाव असम का लोग अपना अस्तित्व का साथ जोड़ते हैं और हमारे आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग वोट डालते हैं। सो चुनाव जीतने और हारने ये दोनों का साथ एक बहुत बड़ा बातें छुपा होते हैं कि क्या असम फाइनली इट विल बिकम ए मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। तो हमारे शंका हमारे चिंता देश का प्रदेशों से काफ़ी अलग है। सो दिस इज नॉट ए विक्टोरी, प्रोबेबली ये हमारे जो जूत चलता है असम का अंदर इसका और एक चैप्टर है।
0: ये बताएं हेमंत दा कि हैट्रिक होने के बाद इस बार के आपके टर्म में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज क्या हैं, क्योंकि पिछले टर्म में भी हमने देखा कि जिस तरीके से जीएसडीपी जो स्टेट की ग्रोथ की विकास दर है वो ज़्यादा थी। आसाम और तेजी से बढ़े, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड हो, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, क्या लोग आपसे एक्सपेक्ट करें?
1: देखिए, आसाम एक भारत के उभरते हुए इकोनॉमी है, एक शाइनिंग स्पॉट है और असम में बहुत तरक्की हो रहा है, बट इसकी स्पीड को एस्केलेट करना है। सरकार होने दीजिए, विल कम आउट विथ ए वेरी पॉजिटिव एजेंडा और मुझे लगता है और 5 साल असम में यही पेस में काम होगा तो द आइडेंटिटी ऑफ असम विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट।
2: Well, as Hemanta Biswa Sarma becomes the only non-Congress chief minister to hold a second term in the state, his tenure will be closely watched for the execution of sensitive promises regarding illegal immigration and the Citizenship Amendment Act. But with the BJP storming to a third straight win in Assam under his leadership, Hemanta Biswa Sarma is emerging as one of BJP's biggest national power centers. Here's all that you need to know.
3: Three elections, three victories, one man at the center of BJP's Assam juggernaut. Hemanta Biswa Sarma, the architect of BJP's northeast expansion, has now delivered a hat-trick in Assam, crushing the Congress, the very party where his political journey began.
1: Hamara jeet ka sehra Pradhan Mantri Narendra Modi aur Assam BJP ka karyakarta. तमाम कार्यकर्ता वही जीत का फेज है और जीत का श्रेय किसको जाते हैं? असम का जनता को। असम का जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिए।
3: When former Assam Chief Minister and Congress veteran Hiteshwar Saikia was trying to bring the youth to the party fold after the restive 1980s of the Assam agitation, he found his man in Hemanta Biswa Sarma, a young student activist in those days. Sarma, who had built a name for himself in campus politics by then, was associated with the influential All Assam Students Union. Since joining the Congress in 1991 and quitting it in 2015, he remained the go-getter for both Saikia and later Tarun Gogoi. Once a key Congress troubleshooter, Sarma's dramatic exit from Congress in 2015 changed Assam's political destiny. Denied space in Congress, Hemanta crossed over to the BJP and rewrote the state's power equations.

0: All right, let's turn our attention now to the second public appeal for austerity from the Prime Minister in recent days. Prime Minister Modi has issued what is now being seen as the strongest public warning yet on the economic fallout of the escalating West Asia war. Speaking in Gujarat, our Prime Minister called for austerity, restraint and economic discipline, urging Indian citizens to reduce fuel consumption, avoid unnecessary foreign travel, postpone gold purchases, and revive habits last seen during the COVID years, including work from home and shared transport. Government sources have told NDTV that India currently has roughly 60 days of crude reserves and a 45-day rolling LPG stock. But the opposition, however, has seized on the Prime Minister's remarks politically. Rahul Gandhi accused the centre of shifting responsibility onto citizens instead of admitting policy failures. Congress leaders are demanding a special session of Parliament, while the Trinamool Congress has attacked what it calls austerity for citizens and luxury for the political class.
1: सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है।
2: वी आर सिटीजन्स, एज अ प्राइम मिनिस्टर हैज आस्क्ड ऑल ऑफ अस टू can reduce our expenditure on everything that requires foreign exchange to be spent. And in our lives, in our own ways of working, we can identify whatever we can do to preserve the foreign exchange. Simultaneously, we must also earn the foreign exchange more and more.
3: Myself is the Samathu. प्रधानमंत्री जी, एक तो विदेश की यात्रा करना बंद कर दें तो इससे दूसरे लोग सीखेंगे, क्योंकि आज तक कुछ भारत को मिला नहीं इनके यात्रा से। भारत जोकर जरूर बन गया और ग्लोबल पॉलिटिक्स में शून्य हो गया। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आप अनावश्यक रूप से कीमती जहाज लेकर के जब चाहते हैं दूसरे देशों में चले जाते हैं तो आप फॉरेन विजिट कम कर दीजिए। दूसरी बात है, वर्क फ्रॉम होम से आप भी करिए।
4: आप जब मुंह खोलते हैं देश से कुछ मांगते हैं, चुनाव से पहले वोट और चुनाव के बाद त्याग, सारा त्याग देश करेगा। प्रधानमंत्री जी, आप क्या करेंगे?
0: All right, Justin, Prime Minister Modi has now made a politically significant pitch to West Bengal just days after the election verdict. In his latest post, he's framing healthcare access and welfare delivery as a central plank of his party's governance message for West Bengal. He has said that welfare of the people of Bengal was supreme, and he has expressed satisfaction that citizens would now get access to Ayushman Bharat, which is the center's flagship.

0: 102 तो काफी हद तक जो सैफरन स्वीप थी आसाम में वो और भी बढ़ गई है। जब हैट्रिक के साथ आता है साधारण तौर पे हैट्रिक के वक्त पे एक एंटी इनकम्बेंसी सी बिल्ड हो जाती है, लेकिन आपने तो एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को धो डाला, कांग्रेस को धो डाला, यहां तक कि गौरव गोगोई भी हार गए जोरहाट में। मेरे को याद है आपसे मुलाकात हुई थी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले, आपने बोला था राहुल मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूं तुम्हें मुझसे नोट करा लो इसको मैं हरा दूंगा, कुछ भी हो जाए गौरव गोगोई जोरहाट में नहीं, तब तो जीत गए, इस बार आपने हरा दिया। क्या किया आपने इस बार जो पिछली बार नहीं हो पाया?
1: आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज नॉट टेस्टेड, बट इन लास्ट वन ईयर पीपल ऑफ जोरहाट कुड सी हिम फ्रॉम अ वेरी क्लोज क्वार्टर एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट ही नॉट ओनली लॉस्ट हीज ओन सीट, ही लॉस्ट 9 out of 10 in the entire Lok Sabha constituencies. Today, in his constituency, there is only one MLA, that too from an alliance party. Congress has now no MLA from the entire Jorhat Lok Sabha constituency. So it was not a defeat, it was a complete defeat in that sense of term.
0: अच्छा हिमंत दा, इस वक्त आप एनडीटीवी के सारे चैनलों पे लाइव हो, आप एनडीटीवी इंडिया पे भी लाइव हो, इसलिए मैं आपसे हिंदी में सवाल कर रहा हूँ और मेरा अनुरोध है कि आप हिंदी में जवाब दें ताकि हम सब जगह आपको अच्छे से दर्शकों को दिखा भी पाएं। पहले जिस तरह की डोमिनेंस आपकी आसाम में हो गई है वैसे बहुत ही कम प्रेसिडेंट्स हैं बीजेपी में और इस वक्त की राजनीति में जो कि अपने राज्य को और अपने पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करता है। जब आप अपने प्रोग्रेशन को देखते हैं आपके हिसाब से असम की जनता ने इस मैंडेट के जरिए हिमंत बिस्वा सरमा के राजनीतिक भविष्य के बारे में क्या मैसेज दिया है?
1: मेरा नहीं लगता है कि आपको असम का रिजल्ट कोई व्यक्ति का भविष्य का साथ जोड़ना चाहिए। असम इज ए वेरी स्पेशियल केस। राहुल मैं आपको भी जब भी मिलता हूँ हमेशा समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। असम का लोग एक बहुत बड़ा समस्या में है। हम लोग अपना आइडेंटिटी को लेके हमारा भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित रहता हूँ बिकॉज वी आर नाउ लूजिंग द डेमोग्राफिक बैटल बहुत फास्ट। टुडे असम विल हैव 40% मुस्लिम पॉपुलेशन इन दिस सेंसस, रफली अराउंड 40%। 12 से 13 जिला में हम लोग we have become complete minority. So हर चुनाव असम का लोग अपना अस्तित्व का साथ जोड़ते हैं और हमारे आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग वोट डालते हैं। So चुनाव जीतने और हारने ये दोनों का साथ एक बहुत बड़ा बातें छुपा होते हैं कि क्या असम फाइनली इट विल बिकम ए मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। तो हमारे शंका हमारे चिंता देश का प्रदेशों से काफ़ी अलग है। सो दिस इज नॉट ए विक्टोरी प्रोबेबली, ये हमारे जो जूत चलता है असम का अंदर इसका और एक चैप्टर है।
0: ये बताएं हेमंत दा कि हैट्रिक होने के बाद इस बार के आपके टर्म में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज क्या हैं, क्योंकि पिछले टर्म में भी हमने देखा कि जिस तरीके से GSDP जो स्टेट की ग्रोथ की विकास दर है वो ज़्यादा थी, आसाम और तेजी से बढ़े नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड हो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, क्या लोग आपसे एक्सपेक्ट करें?
1: देखिए आसाम एक भारत के उभरते हुए इकोनॉमी है, एक शाइनिंग स्पॉट है और आसाम में बहुत तरक्की हो रहा है, बट इसकी स्पीड को एस्केलेट करना है। सरकार होने दीजिए, विल कम आउट विथ ए वेरी पॉजिटिव एजेंडा और मुझे लगता है और 5 साल असम में यही पेस में काम होगा तो द आइडेंटिटी ऑफ असम विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट।
2: ऑलराइट, एज ऑलवेज द न्यूज एंड अपडेट्स कंटिन्यू राइट हियर ऑन NDTV 24/7। सी यू इन अ मोमेंट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।

0: Now, Assam is all set to get its new chief minister. Well, the chief minister for the second consecutive term. We're talking about Hemanta Biswa Sarma preparing to take oaths for that second term as the chief minister of the state of Assam. The swearing-in ceremony is going to be taking place in an hour's time from now in the presence of the prime minister, the home minister, as well as the defense minister, and also the U.S. ambassador will be there. And of course, more than 20 chief ministers and deputy chief ministers from across the country, they're expected to be in attendance as well, turning that event into a major national level NDA gathering. Even before that swearing-in ceremony, the suspense that continues over that final shape as far as the cabinet is concerned. There have been a lot of rounds, murmurs doing the rounds in regard to there could be perhaps the 18 to 19 ministers that are likely to be inducted into this new government. And speaking to the media ahead of the ceremony was Hemanta Biswa Sarma, saying that that final decision is being taken and that, you know, there have been discussions with the BJP national president as well as Nitin Naveen, and the BJP leadership has weighed in as far as a balanced approach is concerned between experienced faces and fresh entrants. Listen in.
1: हमारे नया जो मिनिस्ट्री है शपथ लेने जा रहा है और ये समारोह में भारत की सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी भाग लेगा साथों साथ भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी रक्षा मंत्री राजनाथ जी और तमाम एनडीए शासित प्रदेशों का मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री हमारे एनडीए का जो घटक दल है उनके अध्यक्ष लोग तो बहुत सारे लोग आएगा इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए कुछ लोग आएगा लिस्ट तो इट इज जस्ट 18 और 19 नेम्स सो कोई लिस्ट बनाना जरूरत नहीं था दैट इज इन माय मेमोरी इटसेल्फ मतलब एज ऑफ नाउ बिफोर डिस्कशन विद हिम आई कैन से एनीथिंग बिकॉज I have to go by the party's overall guidance. So, I maybe want to induct all new, maybe all old faces. So, those I have to take the guidance, general guidance from my national president. Then only we can decide who will join, who will not join.
2: बंगाल की जीत हम लोग के लिए बहुत मायने रखती है और असम में जिस तरीके से इतने बड़े जनादेश के साथ एक बार फिर से हमारी सरकार एनडीए की सरकार बनी है इसका श्रेय दोनों राज्यों की जनता मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है
3: अ बिग विक्ट्री हियर इन असम आप इसको किस तरह से देखते हैं और ये उत्तर पूर्व में बीजेपी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है
4: नहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरा देश के लिए भी इम्पोर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी बिना अभी डेवलपमेंट कभी भी नहीं हो सकता है आप जानते हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जो 2047 में 2047 में विकसित भारत होना चाहिए तो सभी देश में अगर हमारे जो डबल इंजन का सरकार हो इससे हर स्टेट डेवलप भी जल्दी जल्दी होगा विकसित होगा और असम जिस तरह अभी लास्ट थ्री टर्म में जिस तरह यहाँ पर बदल दिखाई दे रहा है ये और आगे बदलेगा और अच्छा होगा और आप जानते हो असम हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा एक सेंटर है तो ये गेटवे आप बोल सकते हो तो इसका डेवलप होगा धीरे धीरे पूरा नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा
5: इट इज अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी टू बी इंडक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा सो एट दिस हिस्टोरिक मोमेंट आई कैन से दिस मच ओनली दे विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू द टू द माने इकोनॉमी ऑफ आवर स्टेट एंड कलेक्टिवली विल ट्राई टू our level base to make Assam a contributory state in the growth and economy of our country.
0: And also speaking to Hemanta Biswa Sarma is NDTV's editor-in-chief Rahul Kawal spoke to him about this historic poll result. Let's listen in.
6: Hemanta Biswa Sarma, century, wo bhi hat-trick ke saath, logon ko lag... तमिलनाडु में क्या होगा इस पर अनिश्चितता थी पश्चिम बंगाल को लेकर सस्पेंस था केरल में कितनी टाइट फाइट होगी अगर लोग कन्विंस थे कि कहीं पे एक वर्डिक्ट काफी क्लियर है वो आसाम का लेकिन आपको लग रहा था कि सेंचुरी इतनी बड़ी जीत आपकी दर्ज होगी 73 से 102 पार स्वागत है और मुबारकबाद
1: फॉर आस इट वॉज एक्सपेक्टेड प्राइमरीली बिकॉज इन 2000

0: 2024 Lok Sabha election, we registered victory in 94 assembly seats. So we were around 100 number right from the 2024 Lok Sabha election. So we further consolidated and crossed 100 and we reached 102. So in Assam, it was not a major surprise. It was more or less expected that we will be somewhere around 95 to 100.
1: मेरे पास 2024 के लोकसभा के भी आंकड़े हैं, ये देखिए मैप, उसमें 88 थी बीजेपी की खुद की और अब हो गई हैं 102, तो काफ़ी हद तक जो सैफरन स्वीप थी आसाम में वो और भी बढ़ गई है। जब हैट्रिक के साथ आता है, साधारण तौर पे हैट्रिक के वक्त पे एक एंटी इनकम्बेंसी सी बिल्ड हो जाती है, लेकिन आपने तो एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को धो डाला, कांग्रेस को धो डाला, यहाँ तक कि गौरव गोगोई भी हार गए। जोरहाट में मेरे को याद है आपसे मुलाकात हुई थी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले, आपने बोला था राहुल मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, तुम्हें मुझसे नोट करा लो, इसको मैं हरा दूंगा, कुछ भी हो जाए गौरव गोगोई जोरहाट में नहीं, तब तो जीत गए, इस बार आपने हरा दिया। क्या किया आपने इस बार जो पिछली बार नहीं हो पाया?
0: आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज नॉट टेस्टेड, but in last one year people of Jorhat could see him from a very close quarter, and important point to note that he not only lost his own seat, he lost 9 out of 10 in the entire Lok Sabha constituencies. Today in his constituency there is only one MLA, that too from a alliance party. Congress has now no MLA from the entire Jorhat Lok Sabha constituency. So it was not a defeat, it was a complete defeat in that sense of term.
1: अच्छा हिमंत दा, इस वक्त आप NDTV के सारे चैनलों पे लाइव हो, आप NDTV इंडिया पे भी लाइव हो, इसलिए मैं आपसे हिंदी में सवाल कर रहा हूँ और मेरा अनुरोध है कि आप हिंदी में जवाब दें ताकि हम सब जगह आपको अच्छे से दर्शकों को दिखा भी पाएं। पहले जिस तरह की डोमिनेंस आपकी आसाम में हो गई है, वैसे बहुत ही कम प्रेसिडेंट्स हैं बीजेपी में और इस वक्त की राजनीति में जो कि अपने राज्य को और अपने पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करता है। जब आप अपने प्रोग्रेशन को देखते हैं, आपके हिसाब से असम की जनता ने इस मैंडेट के जरिए हिमंत बिस्वा सरमा के राजनीतिक भविष्य के बारे में क्या मैसेज दिया है?
0: मेरा नहीं लगता है कि आपको असम का रिजल्ट कोई व्यक्ति का भविष्य का साथ जोड़ना चाहिए। आसाम इज ए वेरी स्पेशल केस। राहुल मैं आपको भी जब भी मिलता हूँ हमेशा समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। आसाम का लोग एक बहुत बड़ा समस्या में है। हम लोग अपना आइडेंटिटी को लेके, हमारा भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित रहता हूँ, बिकॉज वी आर नाउ लूजिंग द डेमोग्राफिक बैटल बहुत फास्ट। टुडे आसाम विल हैव 40% Muslim population in this census, roughly around 40%. 12 से 13 जिला में हम लोग we have become complete minority. So हर चुनाव असम का लोग अपना अस्तित्व का साथ जोड़ते हैं और हमारे identity को protect करने के लिए लोग vote डालते हैं। So चुनाव जीतने और हारने ये दोनों का साथ एक बहुत बड़ा बातें छुपा होते हैं कि क्या असम फाइनली इट विल बिकम ए मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। तो हमारे शंका, हमारे चिंता देश का प्रदेशों से काफ़ी अलग है। सो दिस इज नॉट ए विक्टोरी, प्रोबेबली ये हमारे जो जूत चलता है असम का अंदर, इसका और एक चैप्टर है।
1: ये बताएं हेमंत दा कि हैट्रिक होने के बाद इस बार के आपके टर्म में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज क्या हैं, क्योंकि पिछले टर्म में भी हमने देखा कि जिस तरीके से GSDP जो स्टेट की ग्रोथ की विकास दर है वो ज़्यादा थी। आसाम और तेज़ी से बढ़े, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड हो, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, क्या लोग आपसे एक्सपेक्ट करें?
0: देखिए आसाम एक भारत के उभरते हुए इकोनॉमी है, एक शाइनिंग स्पॉट है और असम में बहुत तरक्की हो रहा है, बट इसकी स्पीड को एस्केलेट करना है। सरकार होने दीजिए, विल कम आउट विथ ए वेरी पॉजिटिव एजेंडा। और मुझे लगता है और 5 साल असम में यही पेस में काम होगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: But our lead story, Assam is all set for a massive political show of strength yet again in just a matter of 3 days. Remember, you had seen on Saturday how the entire might of the NDA had congregated in Kolkata for the swearing-in of Shuvendu Adhikari, and now they are going to be in Guwahati for the swearing-in of Himanta Biswa Sarma as he prepares to take oath for a second consecutive term as the Chief Minister of Assam. Preparations are underway for a grand ceremony in Khanpara in Guwahati. NDA leaders have all arrived to attend the event. The Prime Minister is going to be there any moment now. Defence Minister Rajnath Singh, Amit Shah, Home Minister, someone who is supposed to be very close. In fact, Himanta Biswa Sarma is the key person for Amit Shah himself for the entire Northeast. Remember, he also leads the NEDA for the NDA in the entire Northeast. Anything to do with the area, he really is the person to go to. US envoy Sergio Gore has also arrived in Guwahati to participate in that ceremony. Even before this oath taking was to start, suspense continues over the final shape of the new NDA cabinet. Himanta Biswa Sarma indicated that around 18 to 19 ministers are likely to be inducted in the new government. However, as of today, only 4 ministers will be taking oath along with him. 2 of these belong to the allies who contested along with the BJP in this grand alliance, one coming from the BPF and the other from the Assam Gana Parishad. So far, it's only Himanta Biswa Sarma himself and these 4 ministers who are going to be taking oath today, with a bigger expansion slated for later.
1: हमारे नया जो मिनिस्ट्री है शपथ लेने जा रहा है और ये समारोह में भारत की सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी भाग लेगा, साथों साथ भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ जी और तमाम एनडीए शासित प्रदेशों का मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, हमारे एनडीए का जो घटक दल है उनके अध्यक्ष लोग, तो बहुत सारे लोग आएगा, इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए कुछ लोग आएगा। लिस्ट तो इट इज जस्ट 18 और 19 नेम्स, सो कोई लिस्ट बनाना जरूरत नहीं था, दैट इज इन माई मेमोरी इट्सेल्फ। मतलब एज ऑफ नाउ before discussion with him I can't say anything because I have to go by the party's overall guidance. So I maybe want to induct all new, maybe all old faces, so those I have to take the guidance, general guidance from my national president, then only we can decide who will join, who will not join.
2: बंगाल की जीत हम लोग के लिए बहुत मायने रखती है, और असम में जिस तरीके से इतने बड़े जनादेश के साथ एक बार फिर से हमारी सरकार, एनडीए की सरकार बनी है, इसका श्रेय दोनों राज्यों की जनता, मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है।
3: अ बिग विक्ट्री हियर इन असम, आप इसको किस तरह से देखते हैं और ये उत्तर पूर्व में बीजेपी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है?
4: नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरा देश के लिए भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी बिना अभी डेवलपमेंट कभी भी नहीं हो सकता है। आप जानते हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जो 2047 में विकसित भारत होना चाहिए, तो सभी देश में अगर हमारे जो डबल इंजन का सरकार हो, इससे हर स्टेट डेवलप भी जल्दी जल्दी होगा, विकसित होगा। और असम जिस तरह अभी लास्ट थ्री टर्म में जिस तरह यहाँ पर बदल दिखाई दे रहा है, ये और आगे बदलेगा और अच्छा होगा। और आप जानते हो असम हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा एक सेंटर है, तो ये गेटवे आप बोल सकते हो।

0: state. You know, so this entire framing of Northeast as the periphery, which is alienated, which doesn't relate to the India mainland, that sort of framing is no more visible. It's not there. It is the mainstream wherein you cannot say whether Guwahati is not as mainstream as New Delhi, right? So this sort of grand mainstreaming of Assam and by extension of entire Northeast is something that NDA has a reason to celebrate, you know? And remember, 10 years before, how many people in India were aware about the nitty-gritty of Assam, the geography that there is a tea tribe, there is Upper Brahmaputra Valley, Lower Valley, Barak Valley. Today you see, you talk about Northeast, you talk about Tripura, you talk about Assam's different regions, demography, the issues and politics. So that is the mainstreaming that Northeast has acquired in the last 10 years. And that is why in terms of record already, BJP government in Assam has amassed Tarun Gogoi led Congress 3 terms consecutive victory to the marginalization of the Congress and other regional party, while the NEDA, the NDA in Northeast led by BJP is as hegemonic as in rest of India. So it's the grand mainstreaming where you cannot differentiate between UP, Bihar, Bengal, and Assam.
1: Absolutely.
0: It all speaks almost in one frame.
1: And the same language, the same politics is now being practiced across. If you see, you've got a Shubhendu Adhikari being greeted with the same kind of cheers that a Himanta Biswa Sarma or a Yogi Adityanath. In fact, Harshvardhan ji, shayad aaj bhi jitna Yogi Adityanath ko airport pe maine dekha, jitna cheers mile, utna to shayad hi kisi aur ko mila ho. Wahi humne Kolkata mein dekha, wahi humne aaj yahan par Assam mein bhi dekha hai.
2: देखिए पद्मजा, मुझे तो लगता है कि अब इस देश में एक दूसरे तरह की नैरेटिव पर चर्चा होनी चाहिए. हिंदुत्व और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स किसी भी राज्य को गुजरात मॉडल में बदल सकती है. और ये मैं जो कह रहा हूँ इसको, इस पर डिबेट बहुत कम हुई है. हिंदुत्व और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स किसी भी स्टेट को गुजरात मॉडल में बदल सकते.
1: हर्षवर्धन जी, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल आपने यहाँ पे टर्म यूज कर दिया है. गुजरात मॉडल के ऊपर तो इतने लंबे लंबे लेख लिखे जाते हैं दैट दिस इज द वर्स्ट मॉडल ऑन द प्लैनेट, द अदराइजेशन, द गुजरात मॉडल इज द डीमन मॉडल.
2: मैंने बहुत सोच समझ कर ये फ्रेज इस्तेमाल किया है, ये शब्द इस्तेमाल किया है. और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो उत्तर प्रदेश एक्सटेंशन ऑफ गुजरात मॉडल है, बंगाल एक्सटेंशन ऑफ गुजरात मॉडल है, असम कॉपी पेस्ट ऑफ गुजरात मॉडल है. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. और एक मैं मतलब इसको थोड़ा सा मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूं, क्योंकि दिखने में लगता है कि बंगाल और असम एक जैसा है. बंगाल और असम की जीत एक जैसी बिल्कुल नहीं. बंगाल में नंबर्स और उसके लिहाज से देखें, मिनिस्ट्री में कम लोगों को लिया तो ठीक है, लेकिन बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पास अभी प्रूव करने की बहुत लंबी यात्रा तय कर. हिमंता विश्व शर्मा ने प्रूव कर दिया है, वो अभी इस जगह पर खड़े हैं जहां वो तय करते हैं कि ये 4 मिनिस्टर होंगे, ये हमारा विधानसभा अध्यक्ष होगा. हाँ, पार्टी के लिए वो कहते हैं कि हमें अपने अध्यक्ष जी से पूछना है, पार्टी को पूछना है, लेकिन वो सब कुछ तय करते हैं. शुभेंदु को अभी इसके लिए थोड़ा समय लगेगा. अभी तो शुभेंदु अधिकारी से लेकर मंत्री से लेकर सब कुछ वो दिल्ली तय करता है, दिल्ली ही तय करेगा. अभी समय लगेगा वो अर्न करने. दूसरा, बंगाल में अभी पहली बार उनकी सरकार बनने जा रही, असम में तीसरी बार ये सरकार बन रही, ये रिकॉर्ड है. और अगर उसको नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के लिहाज से देखें या नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिहाज से देखें तो अब वहां पर सैफरन स्टैंपिंग हो चुकी है, यानी वहां वो वाली सारी मुश्किलें खड़ी खत्म हो गई हैं. और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डेवलपमेंट एंड हिंदुत्व, और अगर आप ध्यान से देखें तो पूरे कैंपेन के दौरान जो हेमंत विश्व शर्मा निशाने पर थे, हम लोगों ने भी आलोचना की थी बहुत से मुद्दों पर, बहुत से उनकी जो क्या कहते हैं पॉलिटिकल कैंपेन वाला वो वीडियो था ना जिसमें एक मुस्लिम दिखता है और हेमंत विश्व शर्मा गोली चला रहे हैं, तो हम लोगों ने उस पर बात की थी. लेकिन ओवरऑल कहें तो हिंदुत्व एंड डेवलपमेंट का जो मॉडल है ये फ्लेवर ऑफ द डे है. ये गुजरात मॉडल पूरे देश में इंप्लीमेंट हो रहा है और हेमंत विश्व शर्मा पूरी तरह से कमांड में है. अमित शाह और नरेंद्र मोदी का पूरा विश्वास उनके ऊपर है.
1: एंड रिमेंबर, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस हेमंत विश्व शर्मा टेकिंग ओवर, सिंस द टाइम दैट ही हैज जॉइंड द बीजेपी, दैट द बीजेपी गॉट अ फुल मेजोरिटी ऑन इट्स ओन. दे हैव गॉट 80, व्हिच मींस दे आर वेल पास द हाफ वे मार्क, एंड येट दे हैव टेकन देयर एलाइज अलोंग. लास्ट टाइम फॉर द 2 elections दे वर स्टक at 60, they were crossing the halfway mark along with their allies. This time they have 102, almost 65% of the seats were won by the BJP alone. Remember, they contested only 90 and yet they ended up winning 80. That gives you an idea of the strike rate of the BJP under Himanta Biswa Sarma this time around. And it's also about the next line of leadership that is being prepared. Who do you see on stage today? You will see the likes of not just Yogi Adityanath, Devendra Fadnavis, Suvendu Adhikari, Himanta Biswa Sarma. You will also see people like Rekha Gupta. You will see people like a Mohan Yadav. You will see somebody like a Pushkar Dhami. All of them people who are either in their early 50s or maybe just about their late 50s. Is this also the next line of leadership? Let's listen in to what Rekha Gupta and Pushkar Dhami told us.
3: Kitna aaj aapke liye bada din hai?
4: Hum sabke liye bahut sukhad din hai. असम में तीसरी बार भाजपा की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हेमंता दा की मेहनत है जिन्होंने असम के हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही सुंदर कार्य किया और जनता ने भी अपना पूरा विश्वास और आशीर्वाद उन्हें दिया मोदी जी की सरकार को दिया हम ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं जनता को जिन्होंने विकास की यह राह पकड़ी
3: है
4: बंगाल में भी बड़ी जीत हुई है पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व की सराहना करता है और उनके किए हुए कामों को आगे बढ़ाना चाहता है
3: महिलाओं ने भरपूर वोट दिया है आपने भी बहुत कैंपेन किया दोनों राज्यों में
4: अब महिलाएं समझ रही हैं कि उनका लाभ उनका सम्मान किस के साथ रहने में है तो मोदी जी ने हमेशा महिलाओं को धुरी मान करके अपनी एक हर एक योजना बनाई उनके लिए इतना काम किया उनके सुखद और सम्मानपूर्ण जीवन के लिए तो महिलाएं जरूर अपने साथ किए हुए अच्छे व्यवहार का पुण्य प्रताप देती हैं
3: कितना बड़ा दिन है आज आपके लिए
5: बहुत बड़ा दिन है दिख ही रहा चारों तरफ आज जिस प्रकार का माहौल है लोगों पर खुशी है और प्रचंड बहुमत की यहाँ सरकार बनी है मैं पूरे नई सरकार को श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी को बहुत बधाई देता हूँ उनके पूरे मंत्रिमंडल को बधाई देता हूँ कि जिस तेज गति से पिछले 5 सालों में यहाँ अनवरत रूप से काम हुआ है लगातार डबल इंजन की सरकार ने काम किया है आगे भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकारें एक नया कीर्तिमान विकास का सुशासन का बना रही हैं असम की सरकार उसको और ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ाने की
1: Rashid Kidwai, a pretty good day in office for Nitin Naveen also, considering this is the first election cycle he went into as the new party president. You've managed the only government where the incumbent has stayed on and that also with a full majority. Young president, young new faces, young chief ministers. Is this BJP 2.0 loading, Rashid Kidwai?
6: Absolutely, Padmaja. I think, Nitin Naveen has been, just lucky and he has got a situation where everything seems to be going right and there is a lot to learn. I mean, the opposition can learn a lot. For instance, you look at the Congress plight. You see, Padmaja, in these days of the oath ceremonies, all the 5 chief ministers have a Congress background or proximity to the Congress from Rangaswamy to even Vijay had knocked at 2009, he had knocked at the Congress door and Rahul Gandhi told him to go and fight youth Congress election. So the Congress must be, wondering and needs to, introspect a lot. Why Shubhendu Adhikari in 1995 was a congressman, then he moved to Trinamool.
1: Rashid Saab, that is the biggest tragedy. Everyone leaves the Congress and wins. Why is the Congress not winning?
6: So it's a perfect training ground. I mean, I think the BJP, Mr. Nitin Naveen, should send a thank you note to Rahul Gandhi that, you're sending us, trained, seasoned, mature politicians.
1: And at this rate, Rashid Kidwai, Rahul Gandhi will have more thank you notes than votes.
6: That is it. But it's for the Congress also to learn a lot. And I think, Kerala is proving to be a litmus test for Rahul Gandhi, how he selects a chief minister there. But here, today's focus is on the BJP and Mr. Himanta Biswa Sarma. One point that my friend Harshvardhan Tripathi was making, see, we are a constitutional democracy, there is rule of law. So it is greater responsibility in the second term of Mr. Himanta Biswa Sarma to abide by the letter and spirit of the constitution. Unless the constitution is changed or there is a review, he must, follow that, letter and spirit of it, where there is an equality and there is, he needs to bring sense of security and justice for all citizens, those who have voted, and greater emphasis is on those who have not voted for him. So that is a spirit of, parliamentary democracy that he must abide by. Whether he takes oath in the name of God or constitution, the constitutional responsibility he cannot escape.
1: You know, and I will let Harshvardhan Tripathi respond to that in just a second, but we've got Rinki Bhuyan Sharma and the children of Himanta Biswa Sarma also entering the venue for the swearing in Khanapara. Let's quickly listen in.
7: Can you say something about this on this officer?
8: हाल ऐसी आनंद दिन ऐसी
9: process, it's a very happy moment.
10: What do you want personally? What work should be done for the first work of this government?
9: That is the CM to decide after he takes the oath.
10: Okay. How are you feeling?
7: Can you say something about this on this?
1: Then obviously, it's a very happy moment. Rinki Bhuyan Sharma also became a character in this entire cast of characters in the Assam elections. Why? Because you remember that press conference that was done by Pawan Khera, the head of communications of the Congress, and that in itself became an election issue, and that is going to be very interesting. What happens to that? Ratnadeep, we want to quickly comment on that. The family of Himanta Biswa Sarma, fun story, do you know that Sukanya, his daughter, also interned with a news agency, with a news company, after she had completed her school education. Yes, Ratnadeep. Interesting that even Rinki Bhuyan Sharma had become a principal character in this Assam election. That case is ongoing.
11: That's right. That's right. In fact, after this oath taking, maybe we will see Pawan Khera joining the investigation, given the fact that now he has an anticipatory bail given. Is that in this second innings of Himanta Biswa Sarma, where the selection of the going with only four ministers to begin with in this swearing in, he is perhaps also showing a sign that this government will show much more maturity, and therefore he is going for experienced people like Ajanta Niyog and giving scope to party old timers like Rameshwar Teli, because there has been a criticism against Mr. Sharma in certain section that he has brought a lot of people from the Congress to the BJP, and in a way people who have come from the Congress to the BJP
1: including 90 seats that the BJP was fighting on, 30 tickets were given to people who had come either from the Congress or from other smaller parties. Yes, go on, Ratnadeep.
11: Therefore, Mrs. Sharma at this moment is trying to go a bit slow, adjust his council of ministers that way. But remember one thing, while he has this problem of plenty, this is also an advantage in a way, because it is just like a senior BJP leader was explaining me off record, that it is like a football team that you prepare for a World Cup, where you have your starting 11, but for every position you have a person on the bench. So therefore, Himanta Biswa Sarma at this moment, while he has taken some of the senior people, remember, there are also very senior and seasoned MLAs who are on the bench, like Pradyut Bordoloi, who has switched over from the Congress to the BJP just ahead of the elections. So therefore, at this moment, with these four, the second innings would start, and then perhaps the focus would be to induct more people. Himanta Biswa Sarma has
1: will we see a slightly different kind of government, a slightly different Himanta Biswa Sarma? Harshvardhan ji, isme respond kar dijiye. Rashid ji bhi keh rahe the ki inclusive aapko rehna padega. Ab wo jo ekdam smash and grab wala jo image hai, wo shayad tone down karni padegi Himanta Biswa Sarma ko. Ab unhone dikha diya hai ki wo khud se pura apna 102 seaten la sakte hain, 80 seaten la sakte hain. Ab thode se tone down. Ab ye main isko aisa kar dunga, usko waisa kar dunga wala rhetoric thoda kam hoga.
2: नहीं, मुझे नहीं लगता है. किसी भी नेता की जो यूएसपी होती है, अगर उसको वो छोड़ देगा तो फिर उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा. और हेमंत विश्व शर्मा इसलिए कांग्रेस से यहां आकर सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि उनकी ये यूएसपी है. पार्टी के भीतर भी बहुत लोगों को ये कई बार ठीक नहीं लगा, कम ठीक लगा. और आपने जो बताया कि 30 टिकट्स जो आउटसाइडर हैं उनको मिले, तो कम से कम 3 टिकट्स मैं ऐसे जानता हूं जहां पर एक तो विधायक थे, जहां पर वो संघ से, भाजपा से मूल रूप से जुड़े कार्यकर्ता थे, लेकिन उनका टिकट काटकर दूसरे को दे दिया गया, जो दूसरी पार्टी थी, जो आप स्मॉलर पार्टीज कह रहे हैं उनको दिया गया. हेमंत हमेशा अपने अंदाज में काम करेंगे और जब टेस्टेड फॉर्मूला
1: उससे फिर पार्टी वीक नहीं हो जाएगी। आप एक तरीके से ये हिमांता पार्टी बना देंगे, भाजपा का क्या होगा? दिस इज नॉट द वे द बीजेपी यूजुअली फंक्शंस। हाउ कैन वन

0: Okay, live shots, the cheers going up as the Prime Minister is there on stage and the swearing in is about to begin any time now. हर्षवर्धन जी, आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे. इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि उत्तराखंड में यूसीसी है, गुजरात में यूसीसी बनाया गया है और अब असम माइट बिकम द लेटेस्ट स्टेट टू एक्चुअली गेट इन द यूसीसी. सो गुजरात मॉडल इन मोर देन वन वे.
1: पद्मजा जी, असम, उत्तर प्रदेश और उसमें बंगाल को भी जोड़िए, इन तीनों ही राज्यों में यूसीसी बहुत जल्द लागू होता हुआ दिखेगा. और ये भारतीय जनता पार्टी के उसमें चुनावी वायदे में, संकल्प पत्र में भी था और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कहते रहे हैं. तो इसमें कोई मुझे भ्रम नहीं दिखता है कि ये गुजरात मॉडल का ही एक्सटेंशन. और किसी भी पार्टी के लिए उसकी कोई तो एक आइडियोलॉजी होती है, कोई एक प्रोसेस होता है जिससे वो अपने वर्कर को थोड़ा सा ऊर्जा मिलाती है, एनर्जी भरती है, उनको कहती है कि हाँ, इसके लिए हम तैयार होंगे तो ये हासिल करेंगे. कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के बीच में के पास सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो मिसिंग है, वो फैक्टर मिसिंग है कि अपने वर्कर को वो बता पाए कि कैसे वो होगा. तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के थॉट प्रोसेस में, उसकी लीडरशिप के थॉट प्रोसेस में बहुत क्लैरिटी है. उनको पता है कि क्या करना है और इसीलिए इस मॉडल की सफलता हम राज्य दर राज्य होते हुए देखते हैं.
0: एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट दिस इज समथिंग दैट द पीपल हैव एक्सेप्टेड, यू नो, मच contrary to the criticism that we had heard about Hemanta Biswa Sarma being polarizing, being communal, the fact is that if you had him pushing the narrative of infiltrators on the one hand, you also had him pushing the Oronodaya scheme. The fact that you had got a Bihu bonus being credited to the account of all the women in February, just before the elections were to take place. You also have him saying that now we've got an expressway in Assam, which many people thought was AI generated or was a picture that was lifted from the US. So it is just this cocktail, Rashid Kidwai, that the country has come to accept. You can call it the Gujarat model, you can call it the Yogi model, you can call it the Assam model, but it is something that now the BJP is championing on the front foot. You got the same thing being said by Shivendu Adhikari as well, that yes, we are going to be unabashed in saying that infiltrators will have to leave this country, encroachers will have to leave this country, but at the same time we will also ensure that reindustrialization takes place, that jobs need to be generated. Rashid Kidwai.
2: Padmaja, I'm glad you raised this point. This is very important. And while everybody, nation is one when it comes to, you know, evicting foreign nationals, infiltrators, aliens, etc., one would agree that in the constitutional scheme of thing and Mr. Modi's own plank of Sabka Saath Sabka Vikas, the bona fide citizens should not be troubled. And there cannot be, you know, any kind of discrimination with those citizens, those who have voted for or against a political party. That is something, a very cardinal law, and that, you know, must be accepted. A thing has been said about UCC. UCC, the first word of UCC is the Uniform Civil Code. It has to be a central law.
3: Shall now be invited to the dais.
0: Okay, sorry to interrupt you. I think the ceremony has started.
3: The office and of secrecy as Chief Minister for the state of Assam, Sri Hemanta Biswa Sarma, Chief Minister Designate. You may be pleased, sir, to administer the oath of office and the oath of secrecy to the Chief Minister Designate as invited and presented.
4: Moi, Sri Hemanta Biswa Sarma. ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু আইন অনুসাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম
3: মই
4: শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনৰ বাবে আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বিবেচনাৰ বাবে অনা হ'ব বা মোৰ জ্ঞাত হ'ব তেনে বিষয় মই কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অৱগত বা প্ৰকাশ নকৰিম।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: found to be almost exactly according to that guest paper. Now, why did that happen? That is exactly where the probe is, and how did it happen, and from where did it happen? So, the Rajasthan
1: points to, and what this indicates is a larger network at play. Harsha, my question then, if you've heard me, is that there's a larger network at play.
0: Definitely happened. Yes, that's exactly what I am also saying, that the papers circulated in Sikar, but the tip-off came from Kerala. So there's Kerala, there's Sikar, there's also reports of Uttarakhand.
2: We तुरंत परीक्षा रद्द हो गई और शीघ्र ही तिथि बताने वाले दोबारा परीक्षा की.
3: सरकार
2: मतलब विपक्ष के लिए हाँ विपक्ष कह रहा है देखो विपक्ष ने तो गहलोत साहब ये दूसरे जो बयान दे रहे हैं इनके तो मैं आप सब गवाही हो कि 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे और पेपर लीक में एक में तो FIR दर्ज कराने के लिए मैं खुद थाने पर 3 दिन तक बैठा रहा दर्ज नहीं की उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके ले गए तो उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है हमारे ऊपर आरोप लगाने का वो खुद साफ सुथरे नहीं हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा पेपर लीक कराए लेकिन हम इसके प्रति गंभीर हैं कि जो सीकर में घटना हुई है और अब CBI जो भी कोई होगा उसको कानूनी दंड दिलाएगी
3: एक सर देखो मामला JJM घोटाले में महिला चुनी की वापस गिरफ्तारी हो उसको लेकर भी अशोक गहलोत जी ने आरोप लगाए
2: अब देखो उनका काम है आरोप लगाना उनके समय में ये घोटाला हुआ और उस JJM के मामले में भी मैं आपको ध्यान है FIR दर्ज करने गए अगर सुखनगर थाने पर गया था आप लोग पधारे थे उन्होंने मना कर दिया तो मैं वहाँ धरने पर बैठा रहा 4 दिन तक और धरने का पर कोई गौर नहीं किया गया कोई FIR दर्ज नहीं की गई उल्टा मेरे को वहाँ से हटा दिया पकड़ के तो वो तो स्पष्ट है मैंने प्रमाण दिए थे एयरकोर इंटरनेशनल कंपनी के प्रमाण दिए थे फर्जी उसमें डॉक्यूमेंट लगाए गए फर्जी वो अपना NOC लगाई गई कि हम कॉम्पिटेंट हैं ये टेंडर लेने के लिए डालने के लिए और वो सब मीडिया के सामने मैंने रखी थी उस
1: Alright, we have Mr. Ashok Gehlot also joining me on the phone line. Gehlot ji, I want to understand your first reaction. NEET exam अब cancel हो गया. आपका first reaction क्या है इस news पे?
4: ये बहुत बड़ी घटना है ये. NTA ने रद्द किया पेपर ये मेरे को सही निर्णय मानता हूँ और फैसला है और पिछले 5-10 सालों से इसके अंदर विभिन्न राज्यों में भी राजस्थान सहित चाहे गुजरात हो चाहे वो पंजाब हो UP हो अधिकांश राज्यों में पेपर आउट होते हैं आर्मी में होते हैं जुडिशरी में होते हैं तो बहुत ही ऐसी गैंगे बन गई है देश के अंदर जिनका काम यही है तो इस पर सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए रोकने के लिए और तय तक क्या है लॉजिकल कंक्लूजन तक क्या है कि वास्तव में ये कहाँ से गड़बड़ी शुरू होती है कैसे होती है ये बहुत जरूरी है जिससे कि आगे रुक सके नौजवानों का बच्चों का भविष्य इसमें जुड़ा हुआ होता है और उसके अंदर जितना परवाह नहीं करते हैं अब दूसरी बार ये आउट हो गया आपका ये NEET का पेपर भी 3 साल के अंदर तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है राजस्थान सरकार को मैंने परसों ही कहा था कि SOG जो है वो छिपा क्यों रही है राजस्थान पेपर छपा मैंने सुना है राजस्थान पेपर छपा है यहाँ पर आउट हुआ है जयपुर सीकर के अंदर उसके बाद में SOG छिपा क्यों रही थी कुछ लोग अरेस्ट करके बैठा दिया उनको FIR दर्ज क्यों नहीं थी ये मैंने परसों ही कहा है अब जब पूरा दबाव पड़ा सरकार पर भारत सरकार पर राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया प्रियंका जी ने किया कई नेताओं ने किया तब जाकर के आंखें खुली है और NTA ने भी इसको रद्द किया है
1: मगर ये नई बात भी तो नहीं है अशोक जी ये पहले भी हुआ है आपके सरकार के नीचे भी ये लीक्स की बातें हुई हैं इट्स अ नेशन वाइड इशू नाउ द कांग्रेस आपकी पार्टी बोल रही है कि व्हेन इट कम्स टू द CBI प्रोब दिस इज नॉट इनफ आपको क्या कहना है उस पर CBI प्रोब इस पे इनफ नहीं रहेगी
4: देखिए मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ ना हमने भी अरेस्ट किए थे इमीडिएटली पेपर रद्द किया था उसी वक्त से मैंने भारत सरकार को अपील करी थी और जब सरकार बदल गई तो लगातार दबाव बना रहे हैं कि भाई ये जो गैंग बनी हुई सब जगह पर, सरकार की बदनामी भी होती है और ये छात्रों के लिए भी, नौजवानों के लिए उचित नहीं है, तो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और राजस्थान में हमने कानून पास किया है जो कंट्री में कहीं नहीं है, जिसमें उम्र कैद की सजा रखी उसके अंदर और 10 करोड़ का जुर्माना उसके अंदर। ऐसा कानून हिंदुस्तान में कहीं नहीं बनाया जो मैंने बनाया था, 10 करोड़ का जुर्माना, आजीवन कारावास बनाया मैंने कानून। तो भारत सरकार को चाहिए कुछ कड़े कदम उठाए,
1: गहलोत जी ये क्यों दोबारा होते जा रहा है, इज माय क्वेश्चन टू यू। ये पहली बार तो नहीं हुआ, ये सालों से होता जा रहा है, ये क्यों हो रहा है?
4: ये इसलिए हो रहा है कि ऐसी गैंग बनी हुई है लोगों की, उनका बिजनेस हो गया एक प्रकार से, वो कहाँ से छुड़ाते हैं, कैसे छुड़ाते हैं, प्रेस से लेते हैं या कहाँ से लेते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें तय तक जाएंगे तब जा करके ये पेपर लीक वाली बीमारी खत्म हो सकती है।
1: गहलोत जी आप क्या, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस कि क्या रिलीफ मिले स्टूडेंट्स को जब तक एग्जाम फिर से नहीं होल्ड किया जाए?
4: रिलीफ तो क्या मतलब कि इनके कोई बात फीस ले तो फीस ले इनको, और तो क्या कर सकते हैं। फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़े, जो पहले फॉर्म भरे हुए उन्हीं को काम ले, हमने रास्ता नहीं किया था, और तो क्या रिलीफ दे सकते बच्चों को। पर वो कितनी उनपे क्या गुजर रही होगी बच्चों पर जिन्होंने रात दिन मेहनत करी है एग्जाम देने के लिए नीट का, और पेपर आउट हो गया और वो कैंसिल हो गया एग्जाम।
1: एंड बिफोर आई लेट यू गो गहलोत जी, आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने सप्रेस किया हुआ है स्कैंडल को, अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के पास क्या प्रूफ है इसके लिए?
4: अरे भैया तो मालूम पड़ चुका है, राजस्थान के अंदर ही यही पेपर छपे हैं, यहीं पर सीकर और जयपुर से खबर आ रही है, सुन रहे हैं पब्लिक से भी कि यहाँ पर जो है मीडिया लगातार यहाँ बता रहा है कि पेपर यहाँ छपे हैं, यहाँ बटे हैं सीकर में जयपुर के अंदर। सच्चाई क्या है तो सरकार बताए आगे आकर के, ये छिपा क्यों नहीं? मेरा मानना ये है कम से कम FIR दर्ज क्यों नहीं की इन्होंने? अब जाके जब रद्द किया है तब जाके अब FIR दर्ज करेंगे, अब इनको करनी पड़ेगी। तो जब मालूम पड़ गया, इनको जानकारी प्राप्त होगी, पहला काम होता है FIR दर्ज करना।
1: जी ये जो नीट एग्जाम है इनमें, इसमें रिफॉर्म लाना चाहिए आपको लगता है?
4: बिल्कुल बिल्कुल ला।
1: कैसे?
4: खाली नीट पे क्यों लाए? हर एग्जाम में रिफॉर्म कैसे होना चाहिए जिससे कि ये बीमारी नहीं हो। 3 मई को पेपर आउट हुआ, एग्जाम हुए हैं 3 मई को एग्जाम हुए हैं और 2 सप्ताह हो गए, अब जाके ये रद्द कर दिया पेपर, तब बताइए क्या बीतती है उन बच्चों पर।
1: All right, Mr. Ashok Gehlot there. Thank you for speaking with us here on Breaking Ground. The Congress doubling down on the central government over this announcement amid the nationwide outrage, student protests and allegations of paper leaks and examination irregularities. The National Testing Agency has cancelled the NEET examination conducted on the 3rd of May and announced that the medical entrance test will be held again on fresh dates to be notified separately. Following the cancellation, the National Students Union of India, the NSUI, is staging protests against the central government. I believe we have Mr. Karthi Chidambaram also joining me on the phone line. Mr. Chidambaram, thank you for speaking to us here on Breaking Ground. I want to understand what your first reaction is to this news coming in of the NEET exam now being cancelled.
5: It's shocking. We in Tamil Nadu have been consistently saying that we don't need the NEET exam. The NEET exam should be scrapped once and for all. This is yet another reason why the NEET should not continue. The NTA has no integrity, no competence. This is happening time and again. They are going to put more than 2 million students and their families in stress all over again. Heads must roll, accountability must be fixed. And I think the Prime Minister must step in, show leadership and fix accountability. The problem in India is every time a failure happens, nobody is held accountable. And we just the system just keeps doing the same thing all over again. This is a systemic problem and nothing is getting fixed. And they need it.
1: Mr. Chidambaram, if you can hear us. All right, Mr. Chidambaram, do you believe that the NEET leak reflects a systemic failure? And how do you think one can reform that failure?
5: If it's systemic failure, it's a failure of the leadership of this government. The government must take responsibility. If there are many systemic failures which keep occurring in India, what is and eventually the buck stops with the government. The NTA is a government of it. There is a minister, there is a secretary, and above all that, there is a prime minister. Somebody must take responsibility. Somebody must keep the tables. And NEET must be scrapped. There is no reason for us to have this exam. All those who succeed in this exam are those who are able to afford to go to very expensive coaching schools after taking a year off after the 12th standard exam. And for an examination system which gives no value to the 12th standard marks, it has no place in our educational system, and it must be scrapped.
1: All right, Mr. Chidambaram, thank you for joining me here on Breaking Ground. I believe we have Mr. Anand Kumar, founder of Super 30, on the phone line with me. Mr. Kumar, thank you for speaking to us here on Breaking Ground. Your first reaction to the news coming in, we have very angry voices from the ground, even from political parties, slamming the NTA on what has happened.
6: ये बहुत ही दुख की बात है कि ऐसी घटना घटी और ये पहली बार नहीं है, कई दफा से ऐसी घटनाएं घटती है. लेकिन इसमें सबसे जरूरी है अभी कि हम लोग इसमें राहत महसूस करिए, सोच कर कि चलिए परीक्षा कैंसिल हो गई है, अपराधी पकड़े गए हैं. अब ऐसी परिस्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स जो परीक्षा दिए हुए हैं, काफी घबराए हुए, उनके पेरेंट्स जो काफी डरे हुए, उन लोगों को हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि घबराइए मत, परीक्षा दोबारा हो रही है. अभी ज्यादा सोचिए नहीं, बल्कि दूसरी तरह से ये सोचिए कि चलो एक मौका मिला है, तो पूरी ताकत के साथ फिर से तैयारी में आप जुट जाइए.
1: कुमार जी, लेकिन क्या रिस्पाइट मिल सकता है स्टूडेंट्स को टिल द एग्जाम इज हेल्ड अगेन फ्रॉम द गवर्नमेंट?
6: गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट तो चाहिए थी पहले से कि इसको इतना सख्ती रख के कि क्वेश्चन पेपर लीक ना हो. कोचिंग जो चल रहा है, जो बाजारवाद हो गया है, जो कोचिंग माफिया लोग हैं वो पैसे कमाने के लिए किसी हद तक गिर रहे हैं. खबरें आ रही हैं कि उनके उनकी मिली भगत, तो उन पर कमान पहले से कसना चाहिए. जब परीक्षा होती है, ये घटना घटती है, तब सरकार हरकत में आती है. अरे भाई, एग्जामिनेशन के 6 महीना पहले से तैयारी करिए कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो. ये बात है,
1: हमारा
6: ये निवेदन है सरकार
1: जी. लेकिन आपको लगता है नीट शुड कंटिन्यू करंट फॉर्म में, कि इसमें बड़ा बहुत सारा रिफॉर्म लाना चाहिए गवर्नमेंट को?
6: बहुत बड़ा रिफॉर्म लाना चाहिए, लेकिन ठीक है, पेन पेपर से हो, ऑनलाइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर सख्त सरकार रहेगी, कड़ी सजा देगी, जिसकी मिली भगत होगी उसको लंबा कारावास होगा, उसको लंबा जेल होगा, तो एकदम डेफिनेटली कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी. तो हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, उनसे गुहार भी लगा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को तुरंत जेल भेजा जाए और लंबी सजा हो, ताकि कोई दोबारा हिम्मत न करे.
1: और ये जो स्टूडेंट्स
6: हैं, कहना चाहेंगे
1: जी कुमार जी, ये जो स्टूडेंट्स है उनका विश्वास वापस कैसे गवर्नमेंट ला सकती है?
6: उसके लिए उनको अच्छे से इस बार परीक्षा करवानी चाहिए और अगली बार ऐसा ना हो इसकी कोशिश करनी चाहिए. और केवल नीट की परीक्षा नहीं, बल्कि जितने पेपर होते हैं गवर्नमेंट के, कोई भी ऐसी क्वेश्चन लीक की बात नहीं होनी चाहिए. सरकार को इसकी कोशिश करनी चाहिए ताकि विश्वास दोबारा ला सके. और मेरा विश्वास है कि सरकार जरूर ऐसा करेगी, बच्चों का ध्यान रखेगी. और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को, उनको पेरेंट्स को बताना चाहते हैं कि निराश मत होइए, घबराइए मत. घबराने से और चीजें खराब होती है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में पेशेंस बनाए रखिए और परीक्षा की तैयारी करिए, जो होगा अच्छा ही होगा.
1: जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द फोन लाइन देयर, मिस्टर कुमार देयर स्पीकिंग टू ब्रेकिंग ग्राउंड एनडीटीवी 24/7 हियर ऑन दैट बिग न्यूज दैट इज कमिंग इन. यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल रिएक्शंस ऑन दिस, यू आर आल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम द ग्राउंड. यू हैव प्रोटेस्ट दैट कंटिन्यू आउटसाइड द एनएसयूआई एट द मोमेंट. वी विल ट्राई एंड कनेक्ट विद आवर रिपोर्टर्स ऑन द बिग स्टोरी, बट ऑफ कोर्स देयर आर क्वेश्चंस ओवर द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस. द डिसीजन टू स्क्रैप द एग्जाम वॉज टेकन विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इनपुट examined in coordination with central agencies and findings shared by law enforcement authorities. On the ground, there is anger. Of course, this affects and impacts the morale of students who sat for that exam on the 3rd of May. I have Mr. Abhay Anand, educationist, joining me on the phone line. Mr. Anand, let's talk about the students first. When it comes to this big news that has just come in, it impacts the morale of lakhs of students.
7: Yes, it does.
1: And how do you get that, you know, that trust back? Elaborate on that.
7: The only way in which it can be done is getting a fair exam conducted.
1: And that has been difficult as of now with the leaks taking place, Mr. Anand.
7: Yes, I know. It's not the first year. Every year is the same thing which is repeated again and again. And the government is not willing to take lessons. In fact, the style of the leak keeps changing every year.
1: What do we learn from this then, Mr. Anand? There is a huge network at play and it seems that they're not being caught in time. Is there enough accountability when it comes to the NEET exam? Do you think a reform is required? A rehaul is required when it comes to central examinations like the NEET?
7: There is one exam which is of this magnitude, and that is the JEE.
8: We can see the progress and development. So I'm wishing him and his all the ministers who were sworn in today all the very best.
1: Reactions coming in there. Harsha still with me. Harsha, there's anger on the ground. What are we hearing in terms of students in Rajasthan when it comes to this exam? What's the latest you have for us? We're seeing massive security deployment in Delhi, but we want to get the latest from you.
0: Yeah, so well, absolutely, my colleague Sushant and I have been following this case very, very closely. And now what we are saying is that, you know, I have with Sushant here with me. So Sushant, the entire thing is that, the paper leak, it started circulating. We cannot call it a paper leak yet, but there is definitely a suspicion that a large number of questions matched. Now, if you were to go through it, there's a student who's doing his MBBS in Kerala, and he gave this paper to his father, who runs a coaching institute. The complaint came from Rajasthan, but exactly how he got the paper is something we are not clear about either.
9: देखिए मैम, एसओजी की जो शुरुआती जांच है उसमें जिस तरह के तथ्य सामने आए और जो एनटीए को साक्ष्य उन्होंने सौंपे हैं, एसओजी के मुताबिक, एसओजी की जांच के मुताबिक ये पता चला है कि जो जांच का दायरा था वो शुरू हुआ परीक्षा से एक दिन पहले, जिस तरह से ये गैस पेपर जिसको कहा गया वो सर्कुलेट हुआ, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जांच का दायरा आगे बढ़ने पर पता चला कि केवल एक या दो लोग इसमें नहीं जुड़े हुए हैं बल्कि पूरी कड़ियां हैं. और सब
1: आयशा, डू स्टे विद मी. आई बिलीव वी हैव मिस्टर किरोरी लाल मीना, राजस्थान मिनिस्टर, ज्वाइनिंग मी ऑन द फोन लाइन. मीना जी, आपसे सवाल ये है कि इस लीक के बारे में आप हमें और क्या बता सकते हैं जिसकी वजह से नीट का एग्जाम अब कैंसिल हो गया, खारिज हो गया?
10: देखो, ऐसा है, राजस्थान में हम सवा दो साल से सत्ता में, जितने भी स्टेट में अब पेपर हुए कोई भी लीक नहीं हुआ, जबकि पिछले राज में 18 से 17 पेपर लीक हुए थे. किंतु ये अनफॉर्चुनेट सीन है कि सीकर में ये पेपर लीक हुआ और लोगों ने जानकारी दी पुलिस को, तो एसओजी एक्टिव हुई और एसओजी की शक्ति का परिणाम हुआ कि उन्होंने प्रमाण दिए एनटीए को, जिसके आधार पर एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी और सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए. इससे बड़ी संवेदनशीलता कोई सरकार की हो नहीं सकती. और जो प्रतिपक्ष है वो बेबुनियाद आरोप लगा रहा है. इसलिए अब जो भी मुलजिम है, चाहे सीकर में हो चाहे केरल में, सीबीआई उसको छोड़ेगी नहीं, उसको कानून का शिकंजा तक कसा जाएगा.
1: तो इंक्वायरी कहाँ तक गया है अभी तक सर इसमें?
10: अभी तक तो हमारी जो एसओजी है उसने ये पुख्ता प्रमाण दिए थे कि पेपर लीक हुआ है. अब आगे की जांच सीबीआई करेगी, तभी जाके पता लगेगा कौन किस किस गहराई तक जुड़ा हुआ है.
1: लेकिन मीना जी, यू हैव द कांग्रेस कमिंग आउट एंड सेइंग, अशोक गहलोत जी से बात हुई है, सचिन पायलट से, वो बोल रहे राजस्थान गवर्नमेंट किसी को अरेस्ट ही नहीं करना चाहते हैं.
10: ना, ऐसा गलत है. देखो, वो एक अधकचरी बात कह रहे हैं, प्रीमेच्योर टास्क कह रहे हैं. एक दिन एसओजी ने लगा के पूरी गंभीरता से जांच करने के बाद में एनटीओ को रिपोर्ट किया, जो हमारी एसओजी है राज्य की एजेंसी, उसके आधार पर ही पेपर जो लीक माना गया और वो रद्द हुआ है, और उसी के आधार पर सीबीआई जांच के आदेश तत्परता से सरकार ने दिए. सरकार बड़ी गंभीर है, उनके आरोप बेबुनियाद है.
1: मीना जी, राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए थे जब लीक के बारे में पता चला था?
10: पता लगते ही एटीएस और एसओजी की जांच करवाई थी और एसओजी ने जांच करके एनटीए को बता दिया. अगर लापरवाही होती राज्य सरकार की एजेंसी की, जैसा कि प्रतिपक्ष कह रहा था दबाने का काम कर रहे हैं, तो आज जो एक्शन केंद्र ने लिया है, एनटीए ने लिया है, वो नहीं होता.
1: लेकिन कांग्रेस कह रहा है कि रिपीटेड लीक्स होते हैं आपके स्टेट में, जो ये कहलाता है कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है।
10: ना ना, रिपीटेड पेपर लीक हुए थे पिछले राज्य में, 18 में से 17 पेपर। हम एफआईआर दर्ज कराने जाते थे, एफआईआर दर्ज नहीं करते थे। एक बार तो मैंने 3 दिन तक धरना दिया था, एफआईआर दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। हमारे राज्य में 76 थानेदार जेल के शीशों में बैठे हैं, 2 RPSC के मेंबर जेल की हवा खा रहे हैं, 1 PhD मिनिस्टर जेल की हवा खा रहा है, सुबोध अग्रवाल जो ACS थे वो जेल में है। इसलिए हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, मैं इसको नकारता हूं उनके आरोपों।
1: बिफोर आई लेट यू गो मीना जी, आपका क्या संदेश रहेगा स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान से जिन्होंने ये एग्जाम दिया है?
10: मेरे स्टूडेंट्स के लिए यही संदेह कि हाँ, कुछ समय के लिए उनका नुकसान जरूर हुआ है, पुराना उन्हें कुछ दिन के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उनका भविष्य बर्बाद होने से बच गया। इसमें खजूरा घुस जाता, धन हो SOG का जिसने त्वरित कार्रवाई करके सही रिपोर्टिंग कर दी और अभ्यर्थियों का भविष्य बच गया। अभ्यर्थियों को बड़े विश्वास के साथ पुनः परीक्षा में बैठना चाहिए और अपनी कॉम्पिटेंसी के आधार पर उनको चयन होना चाहिए।
1: All right, Mr. Meena, thank you for joining us live. That's Rajasthan's minister who is defending the claims being made by the Congress, where the Congress has said that the Rajasthan government is scared to take any action against the accused and there'll be no arrest in this case because of that reason. I still have Harsha with me and Tejshri cutting across to the national capital where Tejshri is standing by. I also have Tanushka joining us live at this point. Tanushka, what's the latest that we have on this? Have you heard from the government on the NTA announcing the cancellation of this exam? Any reaction coming in yet from the central government on this?
11: Not yet, Vedika. All we have right now is the National Testing Agency statement, wherein they've made very clear that they're going to cancel this examination that was held on May 3rd and that they're going to conduct a re-examination. When that re-examination would be clear after the CBI investigation. Remember, the case is now being looked into by the Central Bureau of Investigation. However, so far what we know from the Rajasthan police and their special operations group is that the leaked paper emerged from a student in Kerala. The student from Rajasthan sent this paper from this student in Kerala, and that students was using this guest paper to the coaching owner as well. And this person who runs the coaching center is in Sikar in Rajasthan. So at this point, you know, the Rajasthan police up until now were probing how this student in Kerala got the paper. So the original source of leak for the paper is still not clear. Now, the complaint was filed by this particular Sikar student, which alerted the SOG. And we know that the SOG was also investigating this handwritten document that has been called as the guest paper containing these exam questions that were being circulated before the examination. Now, this guest paper approximately had 410 questions, out of which 120 questions have matched the guest paper or the, you know, with the actual exam for the biology and the chemistry sections. So all of this up until now, the Rajasthan SOG was investigating into. Moving forward, the Central Bureau of Investigation will be looking into this. As Harsha ma'am was also mentioning earlier, that this does not look like it's just from the state of Rajasthan. It's definitely has a Kerala link at this point. And all of this, you know, wherein there are other states that are involved as well, from where all the students, or if not students, then perhaps coaching centers, because this is what had happened in 2024 in the NEET exam, paper leak exam as well. It's not never just one state that is under play. That time it was Bihar. This time it started from Rajasthan. We already have Kerala links. So it remains to be seen now where exactly is this leak of the paper coming from. Back to you.
1: Harsha also standing by in Jaipur. Harsha, this is not the first time that we're talking about leaks with the NEET, and it's not a stranger to the system within Rajasthan as well. There needs to be an overhaul, of course, but the Congress in the state of Rajasthan at this point stating and claiming that the state government is just not doing enough when it comes to even the probe into this one incident.
0: Well, obviously, you know, it has been a political hot potato. This entire thing of paper leaks has, in fact, rocked the Ashok Gehlot government as well. And this government came to power on the plank that they would not let paper leaks happen. But like Tejasri was saying, and I have Sushant here with me. Sushant, what do we know about that boy from Seeker who made the complaint? He is the one who actually

0: कर ये पेपर लीक करवा रही है और आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से देश का भविष्य खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया और जनता के कोल ठगने का, जनता के कोल भ्रमित करने का।
1: नीट देने वाले छात्रों के लिए एक बुरी खबर आई है। इस साल जो नीट की परीक्षा हुई थी 3 मई को, उसे रद्द कर दिया गया है पेपर लीक की वजह से। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर, क्या कहेंगे सर? ये लगातार इस तरह की अब घटनाएं हो रही है और नीट की परीक्षा रद्द करनी पड़ी एक बार फिर से।
2: बिल्कुल सही कहा आपने कि ये लगातार इस तरह की घटना हो रही है और इसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार हो या जो इसको कंडक्ट करते हैं उनकी तरफ से सख्ती नहीं हो रही। अगर पहली बार अगर सख्ती हो गई होती और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती, उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता तो शायद डरते और इस तरह की घटना बार बार दोहराई नहीं जाती। लेकिन लगता है कि जैसे जो लोग इस काम को कर रहे हैं वो लीडर हो गए हैं, उनको लगता है कि सरकार उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती।
3: डीएमके इज अ पार्टी व्हिच इज अगेंस्ट द नीट एग्जामिनेशन। वी वांटेड टू अबॉलिश नीट प्रिसाइसली फॉर दिस रीजन। वी वांटेड द नीट एग्जामिनेशंस टू बी डन अवे विद बिकॉज वी कैन नॉट अटैच so much of importance or we cannot give so much of sanctity to an examination which is not conducted with taking into account the due diligence. Not the first time, probably this is the fourth or fifth time we have seen CBI inquiring into it and allegations of paper leak. Imagine the plight of the students who have prepared for this examination. Now they have cancelled this NEET examination. The BJP government is running a Tughlaq darbar. It's running a Tughlaq government. They don't understand, they don't know what is governance, they don't know how to go about this and that is why we are in this situation.
4: मतलब हम बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, यंग बॉयज एंड गर्ल्स के साथ क्या हो रहा है, ये पैटर्न हो रहा है। और जब कोई चीज पैटर्न का हिस्सा हो जाती है, अब फर्ज करिए साल भर, मैं चूंकि इस पेशे से जुड़ा हूं, साल भर कोई तैयारी करे और परीक्षा दे के निकले, पता चला कि किसी सिंडिकेट माफिया से वो सारे प्रश्न पत्र बाहर है। हमारे लिए तो एक खबर है, आप मुझसे प्रतिक्रिया ले रही हैं, लेकिन उन बच्चों के सपनों का क्या होता है? मतलब इतने इनसेंसिटिव हम होते जा रहे हैं, इसकी पराकाष्ठा।
5: मैं ये जानना चाहता हूं जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां है, उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं, सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो और वो कर रहे हैं पेपर लीक पे लीक पे। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग, इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा।
6: Alright, so a host of political reactions, and now Rahul Gandhi too has posted on social media regarding the paper leak and the cancellation of the NEET exam that took place on the 3rd of May, where he has posted NEET 2026 exam has been cancelled. The hard work, sacrifices and dreams of more than 22 lakh students have been crushed by this corrupt BJP regime. Some fathers took loans, mothers sold their jewellery, lakhs of children stayed up all night studying, and in return they got paper leaks, government negligence and organized corruption in education. This is not just a failure, it's a crime against the future of the youth, he writes. He says every time the paper mafia gets away scot-free while honest students bear the punishment, and now lakhs of students will once again endure the same mental stress, financial burden and uncertainty. If one's destiny is determined not by hard work but by money and connections, then what meaning will education hold? So Rahul Gandhi there also, you know, hitting out over the paper leak. But as we said, that no matter which government or which party has been in position, we've seen that this scourge of paper leaks has continued through the years. Let's go across to Tejshri now for more on the latest in this story. And Tejshri, even as, you know, we're seeing a lot of political reactions coming in, what is the latest you can share with us about, you know, the investigation, the paper, the NEET exam was cancelled, and now it seems the investigation, which has been taken over by the CBI spread.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: had there at the NSUI office, and now in fact here again you are seeing the visuals, very dramatic visuals unfolding here at the NTA office. In fact, they are sitting on dharna and they are also in fact demanding. What are your demands right now? What are you demanding?
1: हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, जो इसमें दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और एनटीए को बैन करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी को अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पूरे भारत के स्टूडेंट से माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।
0: आगे आप लोग दिल्ली के अलावा क्या पूरे देश भर में प्रोटेस्ट करने वाले हैं?
1: दिल्ली के अलावा पूरे देश भर में हम तो नॉर्मल प्रदर्शन कर रहे हैं आज, और उसके अलावा अगर जांच नहीं हुई इसी तरीके से तो हम उग्र आंदोलन करेंगे पूरे देश में, इनसे ही इंसिडेंट बता देगी।
0: So you see, these are the protests that are underway, and there are a few more karyakartas who are in fact just outside these premises and who are again coming over here. They just want to in fact, you know, confront the officials. Not just that, but they are also holding this dramatic protest here just outside the NSUI, outside the NTA office. And in fact, we'll also keep on showing the visuals so as to the dramatic scenes which are unfolding, and we'll also in fact speak to them. आपने ये poster लिया हुआ है कि doctor degree on sale, NEET 2026 scam.
2: बिल्कुल, मोदी सरकार में डॉक्टर डिग्री सेल हो रही है। आप सोचिए, मोदी सरकार में पिछले 10 साल में 89 पेपर लीक हो चुके हैं। नीट जैसी परीक्षा, जो देश की सबसे कठिन दूसरी परीक्षा है, उस परीक्षा को पेपर को लगातार 3 साल से लीक हो रहा है, और हर बार कोई ना सरकार यही कहती है कि हम दोबारा करा देंगे, हम सॉरी बोल देंगे, इसके अलावा वो कभी कुछ नहीं करती। सीबीआई
0: जांच। आप लोग कहाँ पर आगे की तरफ जा रहे हैं? पूरा गेट की तरफ
2: आगे तक जाएंगे, और हम लोग एनटीए से केवल सॉरी से नहीं काम चलेगा, हमें सख्त जवाब चाहिए एनटीए से।
0: You see, they are also in fact planning to move towards the gate. Probably they will be detained as they were not allowed to protest outside the NSUI office as well. But here, in fact, you can see what we are also.
3: All right, so as you can see, a lot of anger on the ground and protests taking place after the NEET exam has been cancelled. It was held on the 3rd of May. The new date has not been announced, but once again, it is a paper leak that is being blamed, and that is the reason, and the CBI now investigating across several states. We'll continue to track this story. For the moment, slipping into a short break.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: and welcome. You're watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal. On the show today, the suspense continues over the new Keralam Chief Minister, with Rahul Gandhi holding a slew of meetings. The question now is, will there be a common name chosen between KC Venugopal and VD Sathisan? Also on the show today, second stop story is from Tamil Nadu. Post-poll shocker continues in Tamil Nadu politics. Ahead of Vijay's flow test, at least 30 AIADMK leaders vowed support for TVK. And finally, a special coverage on the Trisha story. Lots more lined up for you on the show today. But first, a quick check on the headlines. National outrage after NEET exam cancelled over a paper leak. Demonstrations in Delhi, sources tell NDTV. That leak happened from Nashik in Maharashtra. NDTV speaks exclusively with NTA DG on NEET paper leak. NTA chief says committed to fair exam, asserts tough decisions needed to maintain credibility.
1: Larger interests are mostly NTA was committed to conduct a zero error, zero tolerance to any malpractice, and this report came in with regard to that, in which it was felt that to conduct a re-exam or to cancel this exam will be in the larger interest of most candidates. ICO decided to take this decision, as we have indicated in the press release that's been issued already.
0: Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay appoints his astrologer as officer on special duty to the Chief Minister, reportedly his astrologer TVK Victory a year ago. Suspense over Keralam Chief Minister grows. BJP takes pot shots at Congress, says party clueless despite clear majority. Congress hits back, says decisions will be taken democratically. Jayalalitha's party headed for split. AIADMK leader Shanmugam extends support to Vijay's TVK, seeks Velu money as legislature head. Chief Minister Vijay likely to meet Shanmugam. He's rather met him moments ago. All right, we are cutting across live to the NTA briefing, which is currently underway after the NEET paper exam got cancelled.
2: प्रश्न भी अगर मैच कर रहा है, तो मेरी प्रक्रिया भंगित हो रही है, मेरी जीरो एरर जीरो टॉलरेंस की भंगित हो रही है. इसको जांच करने की जिम्मेदारी कि 30 क्वेश्चन थे कि 45 थे कि 50 थे कि 60 थे, यह काम सीबीआई करेगी, पूरी फोरेंसिक्स लेके करेगी और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई होगी.
3: कितने राज्यों तक ये पेपर पहुंचे? कहां पर हुई, कोई एक लाइन कहे कहां पर चूक हो गई जिसके लिए कहा जाए
2: उसकी भी रिपोर्ट. देखिए, जब तक सीबीआई को जब हमने जांच दी है, तो मैं सीबीआई की जांच को प्रभावित नहीं करना चाहूंगा अपना निर्णय करके. हमने बस ये किया कि जो शिकायत आई थी उसमें अगर एक इंच की भी, एक आयोटा की भी सच्चाई है, तो हम उसके ऊपर लेके कार्रवाई किए हैं. अब किस हद तक है, कितना हद तक है, उसको करने में समय लगेगा, परंतु हम जानते हैं समय बहुत महत्वपूर्ण है. हम जितना डिले करेंगे उतना यह समस्या बढ़ेगी. उतना अगर हमको री एग्जाम करना है, तो वो निर्णय आज हम ले रहे हैं तो हम जल्दी कर पाएंगे. तो हम जांच की इंतजार करें, वो क्या हुआ है, कितने प्रश्न है, कौन कौन इन्वॉल्व है, कितने राज्य इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है, यह सब उसकी सीबीआई की रिपोर्ट में आएगा. अभी मैं अपनी टीम के साथ बैठ करके वही तय करने का प्रयास कर रहा हूँ. जब मुझे बताया इन लोगों ने कि आप सब यहाँ इंतजार कर रहे हो, तो मुझे लगा आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है. इनफैक्ट परीक्षा के पहले जो हमने तमाम कई स्कैमर्स के ऊपर कार्रवाई की, उसकी इनपुट हमें मीडिया से भी मिली. तो मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है. इस तरह के जो अनैतिक कार्य करते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको रोकने के लिए. तो जैसे ही इन्होंने बताया, मैंने बोला मैं चल के आपसे एक साथ बात करूंगा. पहले मैंने बोला कि सबको ऊपर ही बुला लो, बट फिर ये कहा कि नहीं, वहां सेटअप इतना नहीं हो पाएगा, यहीं चलते हैं. तो मैं यही आश्वस्त करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हम हर ऐसे व्यक्ति को जो ये बदमाशी करने की कोशिश कर रहा है, और कहीं भी रिपोर्ट आती है कि कोई प्रश्न पत्र बेच रहा है या कोई झांसा दे रहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस आए एग्जाम के पहले जिसमें लोग ओटीपी मांगते थे, वो स्कैम कर रहा है, पेपर देने की बात करके ओटीपी मांग के उसका बैंक अकाउंट खाली कर रहा है। तो हम उस सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई किए हैं और हमारी यही नीति है कि हम एग्जाम में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होने देंगे।
4: सर एक सवाल, एक सवाल।

0: डेट के लिए मैं अभी अपनी टीम के साथ बैठूंगा और हम अगले कुछ दिनों में पूरी शेड्यूल डेट का हम अनाउंस कर देंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम कम से कम समय में एग्जाम कर लें, जिससे कि जो एकेडमिक कैलेंडर है, जो मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन शेड्यूल है, वो वायलेट ना हो। हम अगले 7 से 10 दिनों के अंदर शेड्यूल बता दें।
1: सर अभिषेक सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपका ही डिपार्टमेंट तय करता है सारी चीजें, प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, फिर उसको छपने के लिए दिया जाता है, इस ट्रेल में कहीं आपको लगता है कि आपका ही कोई कर्मचारी या आपके आपसे जुड़ा हुआ कोई कर्मचारी जो अंदर खेमे में है, वही पेपर लीक करता है, वही डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही पैसे का लेन देन करता है, क्या अंदर का ही कोई शख्स है? क्योंकि देखिए, जब पेपर छपने के लिए जाता है और जब पेपर बनता है उसके उसमें सभी इन्वॉल्वमेंट अधिकारियों का ही होता है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कहां पर वो चूक होती है, कहां से वो लिख करके पेपर इधर उधर होता है, कहां से SMS के जरिए जाता है, ये कैसे होता है?
0: देखिए, ये अंदर का हो या बाहर का हो, CBI से हमारी यही दरखास्त है कि जो भी हो उसको पकड़ के उसको सजा दिलाई जाए, ताकि ये जो समस्या है ये जड़ से खत्म हो पाए। मैं आपके जितना जानकार नहीं हूं, मैं अभी 1 अप्रैल को ही ज्वाइन किया हूं, मैं सिस्टम को अभी किसको ये बताना कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, विल बी प्री जजिंग द होल इंक्वायरी। हम CBI को निष्पक्ष, स्वच्छंद, स्वतंत्र रूप से जांच करने की रिक्वेस्ट किए हैं, और जिसमें NTA से जो भी सूचना चाहिए, NTA के जिस कर्मचारी से पूछताछ करनी चाहिए, CBI को पूरी राइट्स होगी, हम उनको पूरा सहयोग करेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि यह सिचुएशन जो आज हम हैं ये दोबारा ना आए और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी
1: जाए। क्या सिस्टम जो आपने अपनाया है अभी तक उसमें कोई बदलाव होगा?
0: मतलब सिस्टम क्या है, सिस्टम में क्या खामी है, ये इंक्वायरी से जब निकल के आएगा, तो अगर सिस्टम के पार्ट में कोई भी ऐसा क्रम है जिसकी वजह से समस्या होती है तो उसको डेफिनेटली रिव्यू किया जाएगा।
2: पहली बात तो ये, सर ओरिजिन कहाँ था, व्हाट वाज द ओरिजिन एंड व्हाट वाज द मोडस ऑपरेंडी? आपने कहा कि डिजिटल के जरिए भी हुआ और फिजिकली भी उसे कुरियर के द्वारा भेजा गया, इसमें
0: मैंने नहीं कहा,
2: ऐसे रिपोर्ट्स आ रही है सामने, तो आप ये हाईलाइट करिए सर।
0: देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमने जांच CBI को दी है तो, और जितने दिन में हमें 7 तारीख को खबर मिली, हमने इतने दिन में इतना ही तय किया कि कंप्लेंट में सच्चाई है या नहीं है, ओरिजिन क्या है, कौन कौन जिम्मेदार हैं, ये निर्णय इतनी जल्दी हम नहीं ले सकते, ना हमारी क्षमता है। यह कार्य CBI का है और CBI यह कार्य सुचारू रूप से करके ये सबके सामने लेके आएगी कि क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने राज्यों में हुआ, तो ये सब जानकारी CBI देगी। हमने साफ ये कहा, हमने ये साफ साफ कहा कि जो PDF जो सर्कुलेट हुआ उसमें से कुछ प्रश्न पत्र से मिल रहे थे, तो इसको अगर आप लीक कहें या अनियमितता कहें या वॉयलेशन ऑफ प्रोसेस कहें, हमने यह माना कि ये एग्जाम की जो प्रक्रिया चल रही थी उसका उल्लंघन था, इतनी हद तक था कि हमें यह कड़ा निर्णय लेना पड़ा कि एग्जाम कैंसिल करें।
3: सर कहाँ लूप हो
0: जाएगी? अगर गड़बड़ कहाँ से हुई और कहाँ चूक हुई, इसके मैं अंतिम निष्कर्ष पे पहुँच जाता तो CBI को क्या कार्य देने की आवश्यकता होती? हम सारी सूचनाएं, हम जो जितनी जानकारी है हमारे पास, और हम नहीं चाहते कि CBI की जांच किसी भी तरह से प्रभावित हो, तो CBI को फ्री जांच करना बहुत आवश्यक है, इस समस्या को जड़ से खत्म करना आवश्यक है। पेपर के छपने की शुरुआत एक जगह नहीं होती है, कई जगह होती है, वह गोपनीय रखा जाता है तमाम कारणों के लिए, परंतु CBI को वह सारी जानकारी दी जाएगी, और CBI वह जो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी स्टेज पर है, किसी भी क्रम में है, उसको पकड़ के निकालेगी।
4: एग्जाम।

0: happened in 2024. We do not have a sense where the people who were involved in the leak in 2024 got punished or not. And why is it still continuing in 2026 also? Also, you will find several similarities between 2024 and 2026. One is the seeker issue. Why always seeker? In 2024, when the paper, when the center-wise data was published by NTA, we saw the cumulative people scoring more than 650 plus marks in seeker. Just, I think, 43 or 44 centers were there. Their average score was 15% more than the score of from the rest of the country. Are only coaching institutions in seeker teaching properly? Or other coaching institutional hubs like Jaipur, Kota, Delhi, Vizag, why are their percentage of selection not that inflated as compared to seeker?
1: Right.
0: So that is also should be taken into question.
1: All right, that needs to be taken into cognizance at the central level and perhaps the Supreme Court as well when it listens to petitions that may be filed and or that have been filed in the previous cheating and such leaks as well. But Tushar, coming to you, what are your expectations now? You know, now the NTA says that a new date will be announced. Do you think that that is the larger solution right now? क्या आपको लगता है कि यही एक सोल्यूशन है क्या आपको लगता है कि आगे there should be more such you know important corrective measures that need to be implemented more transparency and accountability to be established so that no such cheating or leaks take place in future
2: हां जी सर एक्चुअली ये सिर्फ एक इकलौता सोल्यूशन नहीं होगा कि दोबारा रीनीट करा दिया ऐसे तो फिर हर साल रीनीट करवाना पड़ेगा एक्चुअली दे इवन कांट प्रिडिक्ट कि हम कैसे इमोशनल रोलर कोस्टर पे जाते हैं पहले पूरे साल पढ़ाई करो फिर वो जो नीट के एक दिन पहले की टेंशन होती है उससे ओवरकम करके वो तीन घंटे अच्छे से फोकस हो के एग्जाम दो फिर उसके बाद अच्छा पेपर जाए हम थोड़े रिलैक्स हुए पांच छह दिन बाद पता चला कि ये तो तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा
1: जी।
2: तो ये सब नहीं होना चाहिए एक्चुअली जैसे सर ने कहा कि सीबीटी मोड पे होना चाहिए दो फेजेस में होना चाहिए और सीबीटी मोड पे ये होगा कि पेपर लीक होने के चांस एकदम
1: बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सीबीटी मोड में ये होना चाहिए लेकिन काश्वी भी हमारे साथ है 30 सेकंड है मेरे पास सिर्फ काश्वी अब आपको क्या लगता है कि होना चाहिए और दूसरा कितनी मेहनत की थी आपने इस दिन के लिए आपने कहा कि अब इम्तिहान फिर से दोहराना नहीं चाहिए उन लोगों को हटा देना चाहिए जिन्होंने चीटिंग की या लीक किया कि क्या आगे की राह आसान होगी
3: मेरे अकॉर्डिंग मतलब रीनीट तो नहीं होना चाहिए उसके अलावा वही वाली मैं अभी भी वही वाली बात कहूंगी कि आप देखो किसने लीक करवाया क्योंकि भाई जो सर कह रहे हैं कि 2024 में भी सेम चीज रिपीट हुई थी पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला ना उस चीज का तो आप इस चीज को हमें कैसे एश्योर कर सकते हो कि ये वाली चीज आगे रिपीट नहीं होगी
1: वेल दैट इज द बिग क्वेश्चन रियली बिल्कुल बिल्कुल काश्मीर मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को और लाखों ऐसे लोग हैं पूरे दुनिया में इनफैक्ट पूरे इंडिया में जो अभी ऐसा सोच रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि सरकार क्या कदम उठाएगी बट थैंक यू वेरी मच टू डॉक्टर आनंद सिंह तुषार एंड काश्मीर फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस डिबेट दैट हैज लेड टू एन आउटरेज ऑल अक्रॉस द कंट्री एज पीपल आस्क वेयर डज द बक स्टॉप हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द गवर्नमेंट टू ब्रिंग इन करेक्टिव मेजर्स फॉर अ ट्रांसपेरेंट and accountability to be there so that free and fair NEET examination takes place. Thank you for joining us. We track that closely. And now we have big breaking news coming here on NDTV on the Nationwide at 6. Vijay astrologer appointment has irked the allies. Now, you know that Vijay, the newly appointed chief minister of Tamil Nadu, had appointed his OSD, his astrologer, in fact, as the new OSD officer on special duty. Congress, VCK, left have now objected to this new appointment that was made earlier today. Astrologer made OSD. Allies raise eyebrows on this entire matter. Allies have now asked, why does an astrologer need such an official government post on this entire matter? We've been tracking this very closely. Remember, all through the election and through the results, NDTV's team was strongly reporting from ground, all aspects, all these elections. But immediately after being the chief minister, Vijay has erupted into a new controversy. In fact, Vijay is joining us on this story, our correspondent from Tamil Nadu. Vijay, what are you picking up on this entire story? What is the opposition and perhaps the alliance partners of Vijay and the TVK really...

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये ही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्थ और मसाला।
5: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: और बिकॉज ही वॉज देयर, तीन टर्म से तीन कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो उनको मालूम है इंटरनल क्या क्या है, इसलिए उन्होंने सही जगह पे जहाँ कमजोरी है उन्होंने मारा डंडा और काम हो गया।
1: पर अजमल साहब, लगता तो ऐसे है कि आपका फिक्स मैच है हिमंत बिस्व शर्मा के साथ, जिस तरीके से आप लगातार कांग्रेस को अटैक करते रहते हैं, ये बार बार यही कहना कि भाई कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग बन गई है, मुस्लिम लीग बन गई है, ये तो आपका फिक्स मैच लग रहा है।
0: हम कई साल से बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोग, देखिए हमारा एक ही आदमी गया है, वो भी इलेक्शन से पहले, वो गया है एजीपी में, और कांग्रेस के 10 साल से लोग जा रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े प्रेसिडेंट चले गए, समझे कि नहीं, बड़े उनके एमपी चले गए, ताजा ताजा एमपी उनके अंदर से चला गया। तो कांग्रेस के साथ बीजेपी का मैच फिक्सिंग है, नॉट बदल जनता।
1: बट इसका ये मतलब नहीं है कि कौन किसकी पार्टी में जा रहा है। मेरा कहने का ये मतलब था कि जिस तरीके से आप बार बार कांग्रेस को एक तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई वो मुस्लिम लीग हो गए हैं, लोगों का हक है, द मुस्लिम्स हैव अ राइट टू वोट फॉर हूएवर दे वांट टू, एंड इन फैक्ट इफ दे वांट टू वोट फॉर अ नेशनल पार्टी, व्हाट इज रॉन्ग इन इट?
0: आई हैव स्टार्टेड दिस आफ्टर विनिंग एंड आफ्टर फिनिश द इलेक्शन, आफ्टर द रिजल्ट, व्हेन वी सी द रिजल्ट इज 18 इन 18-19 only 18 is Muslim. What is?
1: Yes, but what is wrong with it?
0: Muslim, then, that's why I'm saying this, claiming this is my claim. There's Muslim, the Congress become a Muslim League.
1: Arey, but Ajmal Saab, then you can also be called the Muslim League, na? 15 out of your 16 MLAs in 2021 were only Muslims.
0: नहीं, हमारी पार्टी में कैसे? 16, 17, 18, you go on the record. दो बार, तीन बार में जितना 18 MLA है, तीन चार आदमी हमारे पास हिंदू रहे, हिंदू भाई लेकिन
1: नहीं,
0: हम लोग
1: सर,
0: तीन भाई, दो भाई मैं और सिराजुद्दीन अजमल, जब पार्लियामेंट में गए तो हमारे साथ एक आदमी था राधेश्याम जी, वो भी हिंदू था।
1: नहीं बट अजमल,
0: कैसे आप कहेंगे हमारी पार्टी को?
1: क्योंकि अजमल साहब 2021 में पिछले इलेक्शन में आपके 16 एमएलए थे, अब घट करके आप सिर्फ 3 रह गए हैं, 16 जो एमएलए थे उनमें से 15 मुस्लिम थे ना, पर आप जो है डेमोक्रेटिक फ्रंट हो जाते हैं, AIUDF हो जाते हैं, कांग्रेस के अगर मुस्लिम एमएलए चुन करके आए तो उनको आप मुस्लिम लीग बोलने लगते हैं, आप भी मुस्लिम लीग हो सकते हैं, कांग्रेस आपको बोल दे आप मुस्लिम लीग हो
0: आसाम के। हमारी पार्टी जब भी है तो हमने सेकुलर का देख लिया, कांग्रेस एक पार्टी हिस्टोरिकल स्टार्ट पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखिए, कांग्रेस को तो दूध का दुलावा आप लोग बनाते हैं मीडिया वाले, हम लोग नहीं बनाते, कांग्रेस का वो कैरेक्टर नहीं रहा, ये तो समाजवादी क्यों बना, पंजाब में अलग पार्टी क्यों बना, बंगाल में अलग पार्टी क्यों बना, महाराष्ट्र में अलग पार्टी क्यों, ये सिर्फ कांग्रेस के जुल्म से नाराज होकर लोग गए।
1: सर उन्होंने डेटा दिखाया,
0: कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा।
1: अरे बट उन्होंने डेटा दिखाया है, आपने सिर्फ असम का एक एग्जांपल कोट किया, बट दे हैव शोन डेटा दैट ऑफ द 664 कांग्रेस एमएलएस अक्रॉस द कंट्री देयर आर 520 हिंदूज व्हिच इज क्लोज टू 80% एंड ओनली 12% आर मुस्लिम्स व्हिच इज बिकॉज दे आर अ नेशनल पार्टी दे आर कंटेस्टिंग अक्रॉस द कंट्री 64 एमएलएस आर फ्रॉम अदर रिलीजियंस देन हाउ कैन यू पुट देम इन द डॉक एंड से
0: सॉरी टू आस्क यू ये जितने मुस्लिम इन्होंने दिए ना पवन खेड़ा सिंह बोल रहे थे आई हैव सीन द इंटरव्यू ये मुस्लिम क्या मुस्लिम है जो मुसलमानों की बात नहीं कर सकते पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दिया जाता ऐसे लोगों को भेजते हैं जो बोल नहीं सकते उनकी कोई आवाज़ नहीं है उनका नॉलेज नहीं है उनकी डिग्री नहीं है उनका एजुकेशन नहीं है ऐसे लोगों को उठा के देते हैं जो उनके सामने भी ना बोले
1: नहीं
0: ये तो कोई रिप्रेजेंटेटिव देना नहीं हुआ
1: नहीं
0: कौम के साथ धोखा है मुस्लिम जाति के साथ धोखा है कौम के साथ
1: नहीं बट मिस्टर अजमल आपको डर तो नहीं लग रहा है कि द कांग्रेस इज नाउ बीइंग चोजन By people who you took for granted, आप उनको एक वोट ब्लॉक की तरह यूज करते थे बट नाउ दे प्रिफर द कांग्रेस पार्टी एंड आई एम सॉरी बट इट वॉज मोस्ट अपेरेंट इन 2024 आपकी खुद की सीट में आप हार गए कांग्रेस के रकीबुल हसन ने आपको 10 लाख के मार्जिन से हराया तो लोगों ने तो चूज किया ना उनको अब आपको डर लग रहा है कि भाई हम लोग एकदम साइडलाइन हो जाएंगे
0: धोखा दे के वोट दिया दो दिन पहले कांग्रेस ने एक हवा उड़ाई प्राइम मिनिस्टर Rahul Gandhi is going to become Prime Minister and Rakibul Hasan is going in the cabinet in Delhi. ये एक ऐसी हवा उड़ाई तो उसके बाद क्या करना है और इधर हेमंत बिस्व शर्मा साहब बार बार लोगों को डरा रहे हैं लोगों के पास भी कोई चॉइस नहीं था कि बचना है तो कांग्रेस को लाओ बचना है तो कांग्रेस को लाओ किसको लाओ कांग्रेस जो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बने प्राइम मिनिस्टर आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के राज कहाँ कहाँ है आप गिनाइए ना प्लीज मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है क्या हरियाणा में कांग्रेस है हाँ क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस है क्या यूपी में कांग्रेस है, क्या पंजाब में कांग्रेस है, क्या दिल्ली में कांग्रेस है? खत्म हो गया। कांग्रेस पार्टी एक रीजनल पार्टी होकर रहेगी मैडम, और इनको अपना पुराना उसूल पे जाना पड़ेगा, सेकुलरिज्म को लाना पड़ेगा। मुसलमान और कांग्रेस के बेवकूफ बनने वाले नहीं है, लोगों ने दिखा दिया। ये अभी 17-18 सीटा है, कहाँ से मुसलमानों की आएगा? जाइए ना, दिखाइए आसामी इलाका, कोई भी उनके पास अगर एक सीट भी है, वाई नॉट? क्यों घबराए हुए हिंदुओं के साथ? क्यों नहीं जाते हिंदू इलाके में? राहुल गांधी जाते हैं, उनका एक चक्कर मरवा देते मुस्लिम इलाके में। इस दिस डेमोक्रेसी, इस दिस डेमोक्रेसी मैडम, इस नॉट डेमोक्रेसी।
1: व्हाट इज
0: लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है।
1: नहीं तो आपका क्या डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म का, कि कांग्रेस जो है मुस्लिम्स का वोट ही ना मांगे? ये कोई खराब चीज तो है नहीं ना? वो हिंदू इलाके में भी जाते हैं, वो मुस्लिम इलाके में भी जाते हैं, वो अलग अलग सीटों पे लड़ते हैं, कई जगहों पे उनके मुस्लिम एमएलए चुन के आते हैं, कई पे उनके हिंदू एमएलए चुन करके आते हैं। क्या ये सेक्युलरिज्म नहीं है?
0: इन इंडिया वेयर आर द मुस्लिम, वेयर मुस्लिम इज कौन? टू अदर पार्टीज। व्हाई? बिकॉज कांग्रेस हैड बिट्रेड देम फ्रॉम लास्ट 75 ईयर इन असम। कांग्रेस हैड नॉट डन एनीथिंग फॉर मुस्लिम। वी हैव problems and problem and on all problems created by Congress government. Detention camp by Dr. Arun Gogoi, foreigners issue, Arun Gogoi, deporter Arun Gogoi, every problem they have created for us.
1: बट असम में आप अगर कह रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है कांग्रेस ने, बराक वैली में आपको वोट नहीं मिला, कांग्रेस को वोट मिला, अपर असम में, साउथ असम में, सारे जितने एरियाज हैं वहाँ पे मुस्लिम्स ने भर भर के कांग्रेस को वोट दिए हैं, उन्होंने कांग्रेस को चूज़ किया है, आपको रिजेक्ट किया है। बंगाल में जो एरियाज है जहाँ पर 60-70% मुस्लिम्स हैं, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। तो क्लियरली कांग्रेस इज द पार्टी ऑफ चॉइस। नाउ आप कह रहे हैं कि नहीं, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, बट मुसलमानों को लग रहा है वो उनको चूज करना चाहते हैं।
0: आई एम टॉकिंग, और इस पर तब अभी कांग्रेस ने और बीजेपी ने मिलकर मुसलमानों को ब्लैकमेल किया। इन लोगों का अंदर का समझौता है। हेमंतों को बोला कि तुम डराओ, खूब डराओ, जैसे मछली मारते आपने तो नहीं देखा होगा, तो एक तरफ से पानी से मछली वाले डंडे से मारते, सब मछली दौड़ के जाते उधर जाल लगाओ। हेमंत मिश्र शर्मा जाल में मछली को भेजने के लिए और डंडा मारते रहे, सारी मछलियाँ जाके हम तो डॉक्टर क्या नाम है कांग्रेस के दुश्मन मुसलमान पहुंचे, इसलिए कि इधर से डंडा मार रहा जाएगा कहाँ? मुसलमानों को एक ही होप है, गौरव गोगोई साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। गौरव गोगोई साहब अपनी सीट नहीं संभाल पाए, गौरव गोगोई अपनी सीट नहीं संभाल पाए, ज्योति ज्योति अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए।
1: नहीं,
0: क्या हो रहा है ये सब?
1: आप भले से ही कांग्रेस को मुस्लिम लीग बोलते रहे, बट द फैक्ट इज दैट नेशन वाइड दे आर गेटिंग वोट्स। यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट
0: दैट इससे कोई अच्छा बेटर लव्स है, यू गिव मी आई विल टेल देम
1: सेक्युलर सेक्युलर यू कैन
0: बेटर लव्स बेटर वर्ड
1: यू कैन कॉल देम सेक्युलर
0: Secular? They are not secular. Nowadays, they are not secular. Only they are claiming to be secular. They are not secular. I am very, very sorry. जाइए ना, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान उनके साथ नहीं है, तो कहाँ से सेक्युलर हो गए? कौन सा स्टेट है उनके पास? जो एक दो है वो भी अगले अगले में खत्म हो जाएगा। जब तक के राहुल गांधी की पॉलिसी नहीं बदलेगी मुसलमानों के लिए सेकुलर कैरेक्टर जो आज़ादी के टाइम पर उनका था, उनके बाप दादा ने गांधी जी ने जो बनाया था जिसके बाद उस कैरेक्टर पे उनको जाना पड़ेगा।
1: क्या है वो
0: ठगी का धंधा? मुस्लिम विल नॉट टॉलरेट, नो।
1: क्या है वो कैरेक्टर? व्हाट इज दिस कैरेक्टर?
0: मुस्लिम दिल खोल के मुसलमानों को अपनाओ, मुसलमान आपको अपना समझे। आज पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान आपको रिजेक्ट कर चुका है। आसाम में एक केस हो गया, आपने इधर से डराया हेमंत के साथ मिलकर, आप लोगों की मिली भगत थी। मैं 1.5-2 साल से कह रहा हूँ हेमंत जी डरा रहे हैं, उनको डर है कि उनकी पार्टी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, तो मैं जाकर कांग्रेस का पीछे पीछे बन जाऊंगा। तो मेरे लिए जिस दिन सीट बांटा उन्होंने कहा 32 ऑफ दिस कैंडिडेट इज माइन, मैंने भेजा उसके अंदर, और जीतने के बाद ही कहा जब कांग्रेस 20-22 पे आ गई तो उन्होंने कह दिया कि इसमें से 8 भेज। क्या मतलब है
1: अजमल साहब,
0: आपसे इतना बेवकूफ समझते हैं कांग्रेस और हेमंत बिश्व शर्मा?
1: अजमल साहब, आपसे आखिरी सवाल मैं यही पूछूंगी कि नाउ वी आर वेरी क्लोज टू द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन, इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली टाइटली फॉट, द वे दीस बाइनरीज आर हैपनिंग, क्या समाजवादी पार्टी को डरना चाहिए?
0: लूट लिया, बंगाल में कोई इलेक्शन नहीं हुआ, वहां डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ। आप लोग पढ़े लिखे हैं मेरे से बहुत ज्यादा पढ़े, क्या हुआ? मतलब गवर्नमेंट का कोई मिशन ही नहीं रहा, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ, लोकल पुलिस ने ना सब कुछ उन्होंने रिपोर्ट कर दिया। अपना अमित शाह जी एक महीना पड़े रहे, व्हाट इज द इंटरेस्ट, व्हाट इज द इंटरेस्ट, सिर्फ इसलिए कि ममता से सत्ता को खींच रहा है, लूट के ले जाना है। एक खुला खुली डकैती था मैडम, डकैती। इससे दूसरी पार्टियां जो अपने आप को एनडीए कहती है, गठबंधन है, अगर गठबंधन था तो राहुल जी ने दिल्ली बंगाल में जाके कैंडिडेट क्यों दिया? क्यों राहुल जी उसके लिए ममता के कैंपेन के लिए नहीं गए? मिलके लड़ते आज नतीजा कुछ और होता। क्या मिले राहुल गांधी को? यहाँ भी कैंडिडेट देते हैं, वहाँ भी कैंडिडेट देते हैं, अपने एलायंस के साथ कैंडिडेट है, सामने दो सीट मिला। हमें अफसोस नहीं है कि हमको आसाम में दो सीट मिला। राहुल गांधी जैसे लोग जो आसमान के सितारे के लोग हैं उनको भी तोड़ देगा। हम तो लूज में नहीं, लूजर नहीं, वी आर नॉट लूजर।
1: किसने क्या लूटा है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। पहले आप एक तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आपके वोट लूट लिए, फिर आप कह रहे हैं बीजेपी ने इलेक्शन ही लूट लिया। बट वेरी डिफरेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सिग्नल्स इन द लीड अप टू व्हाट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन सीजन नेक्स्ट ईयर, अ होस्ट ऑफ स्टेट्स इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश एंड देन ऑफकोर्स 2029। बदरुद्दीन अजमल, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस। दैट्स इट देन फ्रॉम मी ऑन टुडेज एडिशन ऑफ द शो। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर, when it's a story you care for, the buck stops here.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा आर्टिकल मसाला।
6: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
8: So many attacks.
7: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
8: It's incredible.
7: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
8: Welcome to Left, Right and Center.
7: Hard facts.
8: War-struck country.
7: Hard questions.
8: In the Ukraine.
7: 30 years of trust.
9: In the Kargil area.
8: North Ukraine.
10: In France. In Italy.
8: At Srinagar.
10: I am Mr. France.
8: Vishnu Shom for NDTV.
7: Vishnu Shom. Only on NDTV.
11: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
12: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.

0: I believe in all religions. I respect all religions. A person is hurting another religion. Just expunge it. How long will it take? That is a process.
1: So what is the second question?
2: Why did the chief minister at least not step in and say this is not okay, that these words should be expunged?
1: So what is the second question?
2: This is improper.
1: Yeah, Padmaja, let him answer. What is the second question? You said two questions you have.
0: The first question was, when the chief minister is seated in front of him, he could have raised an objection stating that for me, for my government, every religion is equal. Please do not speak like this. If that was not done
1: did he not?
0: Somebody in the assembly, please be very careful and judicious about talking about what happens in the assembly and outside assembly. Somebody from the party could have said, this is wrong, expunge it. We don't want to hurt any religion. The two questions are over. Please feel free to answer to the point. Thank you so much.
1: Please answer this question. Did our CM did not say that we are here for equality? We are here for
0: exactly,
1: everybody.
0: Exactly.
1: We are not going to
0: when
1: take
0: the
1: on
0: chief minister
1: anybody.
0: Says he's for equality,
1: did our CM
0: and right
1: said
0: in front
1: not?
0: Of him, a
1: did
0: person
1: said,
0: makes a remark like
1: yes.
0: this. You
1: just
0: should
1: after,
0: have
1: just after the LOP.
0: Expunge it.
1: No. Please wait, sir. Please wait. We are not going to work as
0: I think the answer
1: you
0: got.
1: No, as you pull the strings. As you pull the strings, nobody is going to work. This is the first statement of the LOP, the respected LOP. This is the first speech of him in this assembly. And he has given a speech. As soon as the speech ends, CM has stated, we are here for equality. We are here, we're gonna see everybody equal, we're gonna treat everybody equal. That was our CM.
2: Let me ask you this, Dr. Rajshekar, very simply. Tomorrow, God forbid, if a riot was happening, will you stand on the sidelines and say, I don't want to get involved in all of this, you know, because we have bigger things to do. I have an expressway to build. I have a school to build. So I will just leave this to the people who are involved in it because I don't want to fan this fire. This is none
1: of
2: my business. This, sir, is a hate crime. And it's the Supreme Court of India said it is a misuse. It is a misuse of freedom of speech. It is against the constitutional provisions of our country. And if inside the assembly, the constitution of our country is being violated yet again, the chief minister simply cannot sit and remain quiet because in cases like this, silence, Dr. Rajshekar, is consent.
1: I have to answer this. You have put a very serious question. If you are expecting a riot over this debate, if you are expecting a riot over fueling this debate, that is not going to happen in Tamil Nadu because you doesn't have any idea of what Tamil Nadu is thinking. Tamil Nadu is not into that. We are not going to get into fist fight over this simple statement.
2: I never said that there
1: is
2: going to be any fight over this comment. I said that this
1: is
2: also a hate crime, like an actual physical hate crime would be. And to keep quiet and say, we believe in equality, but we don't want to get involved, sir. In this particular case, silence would be counted as consent. I'm out of time. I certainly hope that a more strident and specific position is taken on such comments, because these are not innocent. These are not coincidental. The manner in which it was done, misusing the immunity that the State Assembly provides to the Nidhi Stalin, is malicious, nothing less. Thanks very much, all gentlemen, for having joined us. The focus now shifts to history that was scripted in Assam today, with the man who powered BJP's hat-trick in the state taking oath as chief minister for his second consecutive term. Himanta Biswa Sarma led the NDA's campaign. The ruling alliance scored a century this time, winning 102 seats in the 126-seat State Assembly. The resounding mandate has not only defined the state's political picture, but has also sharpened the lines of identity and has pretty much set the tone of what could happen in the lead up to 2029. Now, remember, the overwhelming number that the NDA has got, all of them are Hindus. In fact, what has also happened is that the opposition, the Congress, the second largest party, is almost entirely Muslim. You've got 18 out of 19 MLAs who were elected from the Congress are from Muslim seats. They are from Muslim-dominated areas. They are themselves Muslim. And that is the reason why that now the conversation has started across the country. Is this going to be a sharply defined political narrative, a political battle that is going to be fought in the days to come? And in fact, This is a trend that was first vocalized by Badruddin Ajmal, the leader of the AIUDF, and an MLA now of the AIUDF, who now joins us live on the Buck Stops here. Thank you very much, Badruddin Ajmal Saab, for speaking to us. The Assam cabinet was sworn in today. And, you know, despite what you have said throughout the entire campaign, you say that Himanta Biswa Sarma is doing the rajneeti of nafrat. But in all of this, they have also got a bigger mandate this time. They have won 82 seats and NDA got 102 seats. Why? Look, my
3: hate or reward, both of you are political angles. पॉलिटिकल एंगल ये हेड भी पॉलिटिकल था और रिवार्ड भी जो दिया है वो पॉलिटिकल मिला. सोचा समझा एक तजर्बेकार पॉलिटिशियन है डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा, उनको मालूम है कहाँ किस वक्त कौन सा लग रहा है और किसके ऊपर प्रेशर बनाना. आप इस तरफ 40 किलो का पत्थर रखेंगे तो वो तो 125 का पत्थर नीचे ऊपर हट के आ जाएगा. मुस्लिम को जितना हेट करेंगे, जितना मियाँगिरी बोलेंगे, इतना हम उनका कमर तोड़ देंगे, गर्दन तोड़ देंगे, ये जितना बोलेंगे तो आसामी लोग खुश होंगे. और इसका नतीजा ये है, उनको जितना वोट मिलना था उसका नतीजा दूसरा ये भी है कि कांग्रेस वालों ने वहाँ कोई काम नहीं किया. राहुल गांधी भी पहले आए थे तो उस तरफ लेके नहीं गए, उनको भी पोर्टपेटा में लेके गए इससे पहले वाले, तो उधर कोई जाने के लिए तैयार नहीं है. वोट उनका चाहिए, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स भी नहीं दिए. नूरीन ज्योति को 13 या 14 कैंडिडेट सेट दे दिया, एक भी नहीं आया. अखिल गोगोई को 2 14 में से 2 ही आए, वो भी एक दोनों मुस्लिम इलाके में आए, एक उनका सीट आया एक मुस्लिम इलाके में आया टीम में. ये पूरा एक सोरा समझा प्लानिंग है. और मुझे तो डाउट है कभी कभी डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा का और आसाम के कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है, इससे पहले वाले तो मैं बार बार कहता था 2 साल से 3 साल से ये मिली भगत है. और ये पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे भूपेन बोरा, वो पेड सर्वेंट है, मैं इससे ज्यादा नहीं कह पाऊंगा.
2: नहीं पर हाँ,
3: ये गौरव गोगोई अभी तक बिके नहीं होंगे लेकिन अच्छे खासा समझौते के साथ इन लोगों का ये मैच फिक्सिंग मैच हुआ है. और फिर तुम डराते रहो और लोग हमारे पास आएंगे. नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने हिंदू इलाके में जितने भी सीट दिए उनको कुछ नहीं मिला. 19 जो सीटें मिली है उसमें 18 सीट मुस्लिम को मिली, ओनली मुस्लिम एरिया में. इसका मतलब क्या है, मुस्लिम कांग्रेस का सेकुलर इमेज था, सेकुलर कैरेक्टर था, वो ऊपर के साहब ने खत्म कर दिया.
2: नहीं,
3: या ऊपर के लोगों ने खत्म कर दिया.
2: नहीं,
3: अब वो मैं इसलिए जिस दिन जीते हैं कांग्रेस वाले या फिर जो भी हो, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कांग्रेस नाउ बिकेम ए मुस्लिम लीग पार्टी इन आसाम. अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कसम कमरम कांग्रेस बना था उसका एक सेकुलर कैरेक्टर था. मुल्क को आजाद किया गया था, हिंदू मुस्लिम ने कांधे से कांधा मिला के लड़के मुल्क को आजाद किया था. और उसके बाद आज से कुछ पहले तक कांग्रेस ये मेंटेन कर रही थी लेकिन जब से कांग्रेस ने उस सूर को छोड़ दिया, कहीं समाजवादी बन गया, कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस बन गया, कहीं बंगाल में ममता बन गई, ये सब कांग्रेस के टूटे हुए लोग हैं जो कांग्रेस से कहीं ना कहीं दुखी है. आसाम में भी हाल हो रहा है.
2: लगता
3: कांग्रेस की लापरवाही जाने अनजाने में उसका पूरा का पूरा 100% फायदा जो डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने उठाया. और बिकॉज ही वॉज देयर 3 टर्म से 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको मालूम है इंटरनल क्या क्या है. इसलिए उन्होंने सही जगह पे जहाँ कमजोरी है उन्होंने मारा डंडा और काम हो गया.
2: पर अजमल साहब लगता तो ऐसे है कि आपका फिक्स मैच है हेमंत बिस्व शर्मा के साथ. जिस तरीके से आप लगातार कांग्रेस को अटैक करते रहते हैं, ये बार बार यही कहना कि भाई कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग बन गई है, मुस्लिम लीग बन गई है, ये तो आपका फिक्स मैच लग रहा है.
3: हम कई साल से बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोग देखिए हमारा एक ही आदमी गया है, वो भी इलेक्शन से पहले, वो गया है एजीपी में. और कांग्रेस के 10 साल से लोग जा रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े प्रेसिडेंट चले गए, समझे कि नहीं, बड़े उनके एमपी चले गए, ताजा ताजा एमपी उनके अंदर से चला गया. तो कांग्रेस के साथ बीजेपी का मैच फिक्सिंग है, नॉट बदलती जनता.
2: बट इसका ये मतलब नहीं है कि कौन किसकी पार्टी में जा रहा है. मेरा कहने का ये मतलब था कि जिस तरीके से आप बार बार कांग्रेस को एक तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई वो मुस्लिम लीग हो गए हैं, लोगों का हक है, द मुस्लिम्स हैव अ राइट टू वोट फॉर हूएवर दे वांट टू, एंड इन फैक्ट इफ दे वांट टू वोट फॉर अ नेशनल पार्टी व्हाट इज रॉन्ग इन इट.
3: आई हैव स्टार्टेड दिस आफ्टर विनिंग एंड आफ्टर फिनिश द इलेक्शन आफ्टर द रिजल्ट. व्हेन वी सी द रिजल्ट इज 18 इन 18 19 only 18 is Muslim. What is?
2: Yes, but what is
3: Congress
2: wrong with it?
3: Muslim. That's why I'm saying this claiming this is my claim. There's Muslim the Congress becomes Muslim League.
2: Arey, but Ajmal Saab, then you can also be called the Muslim League, na? 15 out of your 16 MLAs in 2021 were only Muslims.
3: नहीं, हमारी पार्टी में जब भी 16, 17, 18 you go on the record, दो बार, तीन बार में जितना 18 MLA आए, तीन चार आदमी हमारे पास हिंदू रहे, हिंदू भाई लेकर, हम
2: नहीं,
3: लोग तीन भाई, दो भाई मैं और सिराजुद्दीन अजमल जब पार्लियामेंट में गए, तो हमारे साथ एक आदमी था, राधेश्याम जी, वो भी हिंदू था।
2: नहीं, but
3: अजमल कैसे आप कहेंगे हमारी पार्टी को?
2: क्योंकि अजमल साहब 2021 में पिछले इलेक्शन में आपके 16 एमएलए थे, अब घट करके आप सिर्फ 3 रह गए हैं। 16 जो एमएलए थे उनमें से 15 मुस्लिम थे ना, पर आप जो है डेमोक्रेटिक फ्रंट हो जाते हैं, AIUDF हो जाते हैं। कांग्रेस के अगर मुस्लिम एमएलए चुन करके आए तो उनको आप मुस्लिम लीग बोलने लगते हैं। आप भी मुस्लिम लीग हो सकते हैं, कांग्रेस आपको बोल दे आप मुस्लिम लीग हो।
3: असम के हमारी पार्टी जब भी है तो हमने सेकुलर कर दिया। कांग्रेस एक पार्टी हिस्टोरिकल स्टार्ट पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखिए। कांग्रेस को तो दूध का धुला हुआ आप लोग बनाते हैं, मीडिया वाले, हम लोग नहीं बनाते। कांग्रेस का वो कैरेक्टर नहीं रहा, ये तो समाजवादी क्यों बना, पंजाब में अलग पार्टी क्यों बना, बंगाल में अलग पार्टी क्यों बना, महाराष्ट्र में अलग पार्टी क्यों? ये सिर्फ कांग्रेस के जुल्म से नाराज होकर लोग गए।
2: सर उन्होंने डेटा दिखाया है,
3: कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा।
2: अरे बट उन्होंने डेटा दिखाया है, आपने सिर्फ असम का एक एग्जांपल कोट किया है, बट दे हैव शोन डेटा दैट ऑफ द 664 कांग्रेस एमएलएज अक्रॉस द कंट्री देयर आर 520 हिंदूज व्हिच इज क्लोज टू 80% एंड ओनली 12% आर मुस्लिम्स व्हिच इज बिकॉज दे आर अ नेशनल पार्टी दे आर कंटेस्टिंग अक्रॉस द कंट्री 64 एमएलएज आर फ्रॉम अदर रिलीजियंस देन हाउ कैन यू पुट देम इन द डॉक एंड से
3: सॉरी टू आस्क यू ये जितने मुस्लिम इन्होंने दिए ना पवन खेड़ा सिंह बोल रहे थे आई हैव सीन द इंटरव्यू ये मुस्लिम क्या मुस्लिम है जो मुसलमानों की बात नहीं कर सकते पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दिया जाता ऐसे लोगों को भेजते हैं जो बोल नहीं सकते उनकी कोई आवाज़ नहीं है उनका नॉलेज नहीं है उनकी डिग्री नहीं है उनका एजुकेशन नहीं है ऐसे लोगों को उठा के देते हैं तो उनके सामने भी ना बोले ये तो कोई रिप्रेजेंटेटिव देना नहीं हुआ कौम के साथ धोखा है मुस्लिम जाति के साथ धोखा है कौम के साथ
2: नहीं बट मिस्टर अजमल आपको डर तो नहीं लग रहा है कि द कांग्रेस इज नाउ बीइंग चोजन by people who you took for granted. आप उनको एक वोट ब्लॉक की तरह यूज करते थे बट नाउ दे प्रिफर द कांग्रेस पार्टी एंड आई एम सॉरी बट इट वॉज मोस्ट अपेरेंट इन 2024 आपकी खुद की सीट में आप हार गए कांग्रेस के रकीबुल हसन ने आपको 10 लाख के मार्जिन से हराया तो लोगों ने तो चूज किया ना उनको आपको डर लग रहा है कि भाई हम लोग एकदम साइडलाइन हो जाएंगे
3: धोखा देके वोट दिया दो दिन पहले कांग्रेस ने एक हवा उड़ाई कि प्राइम मिनिस्टर Rahul Gandhi is going to become Prime Minister and Rakibul Hasan is going in the cabinet in Delhi. ये एक ऐसी हवा उड़ाई तो उसके बाद क्या करना है और इधर हेमंत बिश्व शर्मा साहब बार बार लोगों को डरा रहे हैं लोगों के पास भी कोई चॉइस नहीं था कि बचना है तो कांग्रेस को लाओ बचना है तो कांग्रेस को लाओ किसको लाओ कांग्रेस जो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बने प्राइम मिनिस्टर आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज कहाँ कहाँ है आप गिनाइए ना प्लीज मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है क्या हरियाणा में कांग्रेस है हाँ क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस है क्या यूपी में कांग्रेस है क्या पंजाब में कांग्रेस है क्या दिल्ली में कांग्रेस है खत्म हो गया कांग्रेस पार्टी एक रीजनल पार्टी होकर रहेगी मैडम और इनको अपना पुराना उसूल पे जाना पड़ेगा सेकुलरिज्म को लाना पड़ेगा मुसलमान और कांग्रेस के बेवकूफ बनने वाले नहीं है लोगों ने दिखा दिया ये अभी 17-18 सीटा है कहाँ से मुसलमानों की आए ना जाइए ना दिखाइए आसामी इलाका कोई उनके पास अगर एक सीट भी है व्हाई नॉट क्यों घबराए हुए हिंदुओं के साथ क्यों नहीं जाते हिंदू इलाके में राहुल गांधी जाते हैं उनका एक चक्कर मरवा देते मुस्लिम इलाके में इस दिस डेमोक्रेसी बनाने का धंधा है
2: नहीं तो आपका क्या डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म का कि कांग्रेस जो है मुस्लिम्स का वोट ही ना मांगे ये कोई ख़राब चीज़ तो है नहीं ना वो हिंदू इलाके में भी जाते हैं वो मुस्लिम इलाके में भी जाते हैं वो अलग अलग सीटों पे लड़ते हैं कई जगहों पे उनके मुस्लिम एमएलए चुन के आते हैं कई पे उनके हिंदू एमएलए चुन करके आते हैं क्या ये सेक्युलरिज्म नहीं है
3: इन इंडिया वेयर आर द मुस्लिम वेयर मुस्लिम हैज गॉन टू अदर पार्टीज व्हाई बिकॉज़ कांग्रेस हैड बिट्रेड देम फ्रॉम लास्ट 75 इयर्स इन असम Congress has not done anything for Muslims. We have problems and problems, and on all problems created by Congress government. Detention camp by Dr. Tarun Gogoi, foreigners issue, Tarun Gogoi.

0: भर के कांग्रेस को वोट दिए हैं, उन्होंने कांग्रेस को चूज किया है, आपको रिजेक्ट किया है। बंगाल में जो एरियाज है जहां पर 60-70% मुस्लिम्स हैं, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। तो क्लियरली कांग्रेस इज द पार्टी ऑफ चॉइस। नाउ आप कह रहे हैं कि नहीं, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, बट मुसलमानों को लग रहा है वो उनको चूज करना चाहते हैं।
1: आई एम टॉकिंग, और इस पर तब अभी कांग्रेस ने और बीजेपी ने मिलकर मुसलमानों को ब्लैकमेल किया। इन लोगों का अंदर का समझौता है, हेमंतों को बोला कि तुम डराओ, खूब डराओ, जैसे मछली मारते आपने तो नहीं देखा होगा, तो एक तरफ से पानी से मछली वाले डंडे से मारते, सब मछली दौड़ के जाते उधर जाल लगाओ। हेमंत मिश्र शर्मा जाल में मछली को भेजने के लिए और डंडा मारते रहे, सारी मछलियाँ जाके हम तो डॉक्टर क्या नाम है कांग्रेस के दुश्मन मुसलमान पहुंचे, इसलिए कि इधर से डंडा मार रहा जाएगा कहाँ। मुसलमानों को एक ही होप है कि गौरव गोगोई साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। गौरव गोगोई साहब अपनी सीट नहीं संभाल पाए, गौरव गोगोई अपनी सीट नहीं संभाल पाए, धुरी ज्योति अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए,
0: क्या हो रहा है ये सब। आप भले से ही कांग्रेस को मुस्लिम लीग बोलते रहे, बट द फैक्ट इज दैट नेशन वाइड दे आर गेटिंग वोट्स, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट।
1: इससे कोई अच्छा बेटर लव्स है, यू गिव मी आई विल टेल देम
0: सेक्युलर, सेक्युलर यू कैन
1: बेटर लव्स, बेटर वर्ड
0: यू कैन कॉल देम सेक्युलर,
1: सेक्युलर दे आर नॉट सेक्युलर, नाउअडेज दे आर नॉट सेक्युलर, ओनली दे आर क्लेमिंग टू बी सेक्युलर, दे आर नॉट सेक्युलर। आई एम वेरी वेरी सॉरी, चाहिए ना पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान उनके साथ नहीं है तो कहां से सेकुलर हो गए, कौन सा स्टेट है उनके पास, जो एक दो है वो भी अगले अगले में खत्म हो जाएगा। जब तक के राहुल गांधी की पॉलिसी नहीं बदलेंगे मुसलमानों के लिए सेकुलर कैरेक्टर जो आजादी के टाइम पर उनका था, उनके बाप दादा ने गांधी जी ने जो बनाया था जिसके बाद उस कैरेक्टर पे उनको जाना पड़ेगा।
0: क्या तो है
1: ठगा ठगी का धंधा Muslim will not tolerate. No.
0: क्या है वो character? What is this character?
1: Muslim, दिल खोल के मुसलमानों को अपनाओ, मुसलमान आपको अपना समझे। आज पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान आपको रिजेक्ट कर चुका है। आसाम में एक केस हो गया, आपने इधर से डराया हेमंतों के साथ मिलके, आप लोगों की मिली भगत थी। मैं 1.5-2 साल से कह रहा हूँ हेमंत जी डरा रहे हैं, उनको डर है कि उनकी पार्टी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, तो मैं जाकर कांग्रेस का पीछे पीछे बन जाऊंगा। तो मेरे लिए जिस दिन सीट बांटा उन्होंने कहा 32 ऑफ दिस कैंडिडेट इज माइन, मैंने भेजा उसके अंदर, और जीतने के बाद ही कहा जब कांग्रेस 20-22 पे आ गई तो उन्होंने कह दिया कि इसमें से 8 भेजे। क्या मतलब है
0: अजमल साहब,
1: आपको इतना बेवकूफ समझते हैं कांग्रेस और हेमंत बिश्न शर्मा।
0: अजमल साहब आपसे आखिरी सवाल मैं यही पूछूंगी कि नाउ वी आर वेरी क्लोज टू द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन, इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली टाइटली फॉट, द वे दीस बाइनरीज आर हैपनिंग, क्या समाजवादी पार्टी को डरना चाहिए?
1: लूट लिया, बंगाल में कोई इलेक्शन नहीं हुआ, वहां डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ। आप लोग पढ़े लिखे हैं मेरे से बहुत ज्यादा पढ़े, क्या हुआ मतलब गवर्नमेंट का कोई मिशन ही नहीं था। होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, आर्मी, पुलिस, CRPF, लोकल पुलिस ने ना सब कुछ उन्होंने रिपोर्ट कर दिया। अमित शाह जी 1 महीना पड़े रहे, व्हाट इज द इंटरेस्ट, व्हाट इज द इंटरेस्ट, सिर्फ इसलिए कि ममता से सत्ता को खींच रहा है, लूट के ले जाना है। एक खुला खुली डकैती था मैडम, डकैती। इससे दूसरी पार्टियां जो अपने आप को NDA के गठबंधन है, अगर गठबंधन था और राहुल जी ने दिल्ली बंगाल में जाके कैंडिडेट क्यों दिया, क्यों राहुल जी उसके लिए ममता के कैंपेन के लिए नहीं गए, मिलके लड़ते आज नतीजा कुछ और होता। क्या मिले राहुल गांधी को, यहाँ भी कैंडिडेट देते वहाँ भी कैंडिडेट देते, अपने एलायंस के साथ कैंडिडेट है, सामने 2 सीट मिला। हमें अफसोस नहीं है कि हमको आसाम में 2 सीट मिला। राहुल गांधी जैसे लोग जो आसमान के सितारे के लोग हैं उनको भी तोड़ देगा, हम तो लूज में नहीं, लूजर नहीं, वी आर नॉट लूजर।
0: किसने क्या लूटा है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। पहले आप एक तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आपके वोट लूट लिए, फिर आप कह रहे हैं बीजेपी ने इलेक्शन ही लूट लिया। बट वेरी डिफरेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सिग्नल्स इन द लीड अप टू व्हाट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन सीजन नेक्स्ट ईयर, अ होस्ट ऑफ स्टेट्स इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश एंड देन ऑफकोर्स 2029 इटसेल्फ। बद्रुद्दीन अजमल, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस। दैट्स इट देन फ्रॉम मी ऑन टुडेज एडिशन ऑफ द शो। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर, when it's a story you care for.